0: और उन लोगों जैसे न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया कि वो खुद अपने आप को भूल गए। यही लोग हैं नाफरमान। अहले दोजख और अहले बहिश्त बराबर नहीं, अहले बहिश्त ही कामयाबी हासिल करने वाले हैं। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम इसको देखते कि अल्लाह के खौफ से दबा और फटा जाता है। और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर करें। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, वो बड़ा मेहरबान है निहायत रहम वाला है।
1: السلام المؤمن المهيمن

إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك إلا

0: मोमिनों, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़कर आएं तो उनकी आजमाइश कर लो, और अल्लाह तो उनके ईमान को खूब जानता है। सो अगर तुमको मालूम हो कि वो मोमिन हैं तो उनको कुफार के पास वापस न भेजो, कि न ये उनको हलाल हैं और न वो इनको हलाल हैं, और जो कुछ उन्होंने इन पर खर्च किया हो वो उनको दे दो, और तुम पर कुछ गुना नहीं कि इन औरतों को मेहर देकर इनसे निकाह कर लो, और काफिर औरतों के साथ ताल्लुकात निकाह बाकी न रखो, यानी उन्हें कुफार को वापस दे दो, और जो कुछ तुमने उन पर खर्च किया हो तुम उनसे तलब कर लो, और जो कुछ उन्होंने अपनी औरतों पर खर्च किया हो वो तुमसे तलब कर लें। ये अल्लाह का हुक्म है जो तुम में फैसला किए देता है, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है।
1: فَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ

دین چھڑی دو جن بار یتیم تھی ویندو پریشان پریئے لائے حق

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
1: मेरा आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आहिन।
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372, 0242-460100।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हरंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

नईम 31,080 वोट खणी सोभारा एल ए ब मीरपुर ब ते पीपल्स पार्टी जो कासिम मजीद 12,904 एल ए टे मीरपुर टे ते पीपल्स पार्टी जो चौधरी यासिर सुल्तान 11,676 वोट खणी कामयाब।

मसलन जे हल लाइ शफ़ाफ़ ऐं गैर तकरारी चूंडूं ज़रूरी आहिनि। आज़ाद कश्मीर में मुहाजरनि जे सीटनि वारो मामिलो जहिड़ी तरह हल थियणु घुर्जे हा, ईअं हल न थियो। चूंडूं तकरारी थियूं त ईंदड़ हुकूमत जो मैंडेट बि तकरारी हूंदो। तकरारी मैंडेट सां ईंदड़ हुकूमत मसला हल न करे सघंदी। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे मुज़फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त कश्मीर में इस्तेकाम लाइ पहिरियों मरहलो शफ़ाफ़ इलेक्शन आहे। आज़ाद कश्मीर जूं चूंडूं हाणे खां ई कुझु तकरारी थी चुकियूं आहिनि। चाहियां थो त कश्मीर जे माण्हुनि खे बि पाकिस्तानी शहरनि जे बराबरी हक़ मिलनि। पीपी जे मंशूर ते अमल सां ई बहरान ख़त्म थी सघनि था।

0: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में मुकर्रर चीन के सफीर जियांग ज़ाइडोंग की मुलाकात विच ओभर अफगानिस्तान ए दक्षिण एशिया समेत खिते के मजमू सूरत हाल से गालियों वज़ीर-ए-आज़म पारा चीनी सदर शी जिनपिंग ए वज़ीर-ए-आज़म ली जियांग लाए नेक ख्वाहिशन जो इजहार शहबाज शरीफ चाहे तो बई मुल्क ते थियल फैसलन ए मुआहदन ते अमल लाए वेझो सहकार जारी रखंदा।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राबते जे लाए 0320180003।
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300338 5569।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा। छो परेशान आई
4: खोलियो तो
5: दा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: ना दा
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
4: मुजे दुकान जी बेड हलंदी।
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
6: ऑफिस जी मेरा पर एफएम 94
7: 0301399282।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम।

0: गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 and 02424601000
3: उम्मीद के दिए जलते हैं
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
5: अवांजी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवांजी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
6: न अदा
8: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
6: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी
7: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
8: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
9: 03013992836
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

अला मोहब्बत में सावल अबड़ो चए। खास फरमाश रहीम कोरार, मास्टर नूर मामन, मामद अली कोरार, अली हसन कोरार, शहर सखर का खमीसो लेगारी, अली हसन लेगारी, सदाम लेगारी, लुत्फ़ ला चनई। खास फरमाश जो प्रिपेयर दोस्त बचल शाह मियाणी का हनीफ।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जेके अमेरिका जे गैर जरूरी मुतालबन सबब नाकाम थियो, जंहिं बाद अमेरिकी वफद इस्लामाबाद खां वापस हलियो वियो, जंहिं बाद ईरान बि ॻाल्हियूं जारी रखण जी ख़्वाहिश ज़ाहिर न कई। ईरानी फ़ौज चयो आहे त अमेरिका तेहरान जी ॿीहर नाकाबंदी कई त फ़ैसिले खे जंग में वाद समझो वेंदो। ईरान खे ख़रीद नथो करे सघिजे, शिकस्त ॾेई सघिजे थी। असां ईरान खे बुरी शिकस्त ॾेई रहिया आहियूं, अमेरिकी रियासत मिशिगन में तकरीब खे ख़िताब कंदे सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान जे बहरिया फिज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ऐं अस्करी क़यादत खे ख़तम करे छॾियो आहे। ईरान हाणे असां सां मुआहदे जूं ॻाल्हियूं करे रहियो आहे। ईरान अमेरिकी हमलनि में 60 शहरियुनि जे शहीद थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरान जे सिहत वारे वज़ारत मूजिबि हमलनि में 670 शहरी ज़ख़्मी बि थिया आहिनि। अमेरिका ऐं ईरान पारां हिक ॿिए ते हमला रोकण बाद आलमी मार्केट में कचे तेल जे अघ में लात जो सिलसिलो जारी। आलमी मार्केट में वेरेंट कचो तेल घटिजी 86.99 डॉलर फी बैरल थी वियो। ईरान ऐं अमेरिका पारां हिक ॿिए ते हमलनि बाद तेल जूं क़ीमतूं 100 डॉलर फी बैरल खां वधी वियूं हुयूं। आज़ाद कश्मीर जे मीरपुर डिवीज़न जे चूंडनि जा गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा अचण जो सिलसिलो जारी। हिन वक़्त ताईं आयल नतीजनि में नवाज़ लीग मैदान मारे वरितो। 10 तकनि मां नून लीग 7 ऐं पीपी 3 सीटनि ते कामयाबी हासिल करे वरिती। रहियल तकनि ते वोटनि जी ॻणप जारी।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज, GAFM 94।

जी प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो जी वक्त हुआ जाता है 11:18 जो कि पाकिस्तान का मेयारी वक्त है, तमाम तो लोग ही गाड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक पे है, जिस पे भी जहाँ भी जा रहे हैं आप क्यों कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बेटर देन एवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीच को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए, ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली, खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत मतलू।

वक्त हुआ जाता है जी 11:19 पाकिस्तान के म्यारी वक्त है. इसके अलावा जी वो लोग जो कि इस वक्त हमें सुन रहे हैं, जिन लोगों की सालगिरह है उनकी, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम बहुत सारी बेस्ट विशेस देंगे कि विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. हैप्पी बर्थडे टू यू. जो लोग बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. जो लोग लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, कुछ हटके कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, तो लगे रहे बहुत सही जा रहे हैं आप. इसके अलावा मेरी आवाज जिन गलियों और चौबारों, शहरों और शराहों, वादियों और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजारों, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बिकुम, अहलन व सहलन, मरहबा व खैर अगले जी आयानु सब बिस्मिल्लाह बाजार शाह निहाओ. Welcome into Zindagi.

प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ होगा, सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें हम आपसे करेंगे. लेकिन उस सबसे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना जो कि होगा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, और सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड.

ओके जी, प्रज्ञा में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरह के कार्ड से। आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं। सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 888 फोन पे। कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है darris@facebook.com/GFM88 की पेज के ऊपर लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग आपको मिलेगी, जो कि होगी लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग नहीं, पोस्ट मिलेगी, पोस्ट होगी जिंदगी गुलजार है की। उसके नीचे आप लोग कॉमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। तो कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है जी 03000113488। इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं तो जरूर कॉल कीजिए और मेरा साथ दीजिए, क्योंकि हम साथ साथ हैं पूरे 1 बजे तक। स्टे ट्यून्ड।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज। मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: बहुत अच्छी, और मुझे बताइएगा गाना सुनाएंगे तो सुना दे
1: तो करेंगे।
0: हाँ जी, लेकिन शर्त ये है, एक तो रोने धोने वाला ना हो गाना, दूसरा पाकिस्तानी कंटेंट हो।
1: पाकिस्तानी?
0: हाँ जी, पाकिस्तानी
1: तो सुना दो मुझे ये।

0: यस मैम।
1: ओके, किसी को डेडिकेट करना है?
0: मेरे दोस्त है रमान खान साहब है और हाफिज सामन साहब है और साहब है और कहीं हाफिज बदर जी साहब और जो भी हमारे प्यारे दोस्त है सबसे मेरी तरफ से असलामुअलैकुम। लेकिन ये प्ले जरूर करना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, प्ले कर दिया। थैंक यू सो मच। ये रहा गाना।

0: ओके जी, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं. हेलो हेलो. ओके जी, एक और ट्राई करेंगे. हेलो हेलो
1: हेलो,
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं?
1: यार मक्तुदुद्दीन गांव फारिन से कामरान अली रिंद कुमारा भाई.
0: कामरान अली रिंद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक.
1: रब ठाक से लख लख कर रहे हैं तू जैसी बहनों की बुआएं हैं हमारे साथ.
0: ओके, और मुझे बताइएगा कि यह प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: जी हाँ.
0: गाना सुनाएंगे?
1: जी हाँ. ये नगमा है अताउल अकेलवी और अली जफर की आवाज में. बालो बत्ती आवे माई सकू मारो संग लाना चल गवाई छोड़ा पण सही अमलाना. जी हाँ, ये है नगमा.
0: ओके जी, किसी को डेडिकेट करना है?
1: जी हाँ दोस्त, बहुत अच्छे हैं. किसके नाम लें किसके नाम लें?
0: चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखें अपना. अल्लाह हाफिज़.

0: जीए सखर FM 88
1: सखर की आवाज। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।
4: बरोज मंगल।

0: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार. हम मुझे कहते हैं आरजी रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कॉल्स के थ्रू. सो कॉल्स आप लोगों की. नेक्स्ट कॉलर, हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: जी मैं वकार, पीछे लड़का ना दे. आप कैसे सुन रहे हैं?
0: वकार भाई
1: कर लगाओ गाना.
0: ओके वकार भाई, प्रोग्राम भी सुन रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, गाने का सेगमेंट भी पता है. गाना लेकर आए, कोई गाना याद है?
1: जी जी गाना याद है,
0: तो सुना दे.
1: गाना है दर्द हो दिल में तो दवा.
0: दर्द वाला ना सुनाए ना, बिना दर्द.
1: बिना दर्द वाला.
0: हाँ बिना दर्द वाला सुनाए, ताकि सुनने वालों को ना पेन किलर ना लेनी पड़े.
1: तो ये गुलाब दी रही जो नो खराब दी. मंजूर है.
0: किसका गाना है? मंजूर सकीन.
1: मंजूर सकीन.
0: गाने का टाइटल क्या है?
1: गुलाब दिंदी हुई सोच जो नो शराब दिंदी हुई.
0: तुम जी
1: इंदे इंदे गुलाब दिंदी हुई सोच जो नो शराब दिंदी हुई रुखसार का आज लता समझे.
0: ओके ठीक है, मुझे पता है किसी को डेडिकेट करना है.
1: ये डेडिकेट आपको और मेरे अभी को.
0: ओके थैंक यू सो मच. और मंजूर सकी रानी का ये गाना हम प्ले कर रहे हैं. और जी इसके अलावा कॉल्स आप लोगों की 03000113488. ओके जी, गाना मेरे ख्याल से अगर तो यही वाला है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी हम सुनेंगे इसको.

0: से तो
1: आगे जी साथ साथ आज का टंग ट्विस्टर भी आपको बताती जाऊंगी। आपने कहना है कि काशान ने कच्ची कलियां खुले खेत में खिलती देखी, ठीक है, ये कहना है कि काशान ने कच्ची कलियां खुले खेत में खिलती देखी। काशान ने कच्ची कलियां खुले खेत में खिलती देखी ये कहेंगे, और जब आप ये कहेंगे तो जो बंदा ज्यादा से ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन करेगा हमारे इस सेगमेंट को।

ओके जी, इसी के साथ एक और गाना प्ले करेंगे, गाने के साथ जाएंगे न्यूज ब्रेक, फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे. और जिन लोगों ने हमें कमेंट्स और मैसेजेस कर दिए, थोड़ा सा हौसला कीजिएगा या इंक्लूड करते हुए जाते हैं. जी हाले सुल्तान का कमेंट आया, वेलकम टू द शो स्वीट सी आरजे, वेलकम टू यू एज वेल हाले सुल्तान, थैंक यू, वाओ नाइस सॉन्ग. आतिफ असलम का माहिया वे प्यार परदेसी ने हमें ज्वाइन किया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. तो ये सारे कमेंट्स अभी तक के, सो स्टे ट्यून्ड जिंदगी गुजर.

0: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।
1: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आजम शहबाज शरीफ पारा ओगरा जी कारगर्दगी बेहतर बनाने सुधार आन जी हिदायत। शहबाज शरीफ चयो त नई पॉलिसी ते अमल के यकीनी बनायो वञे। वफाकी वज़ीरनि जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जे हेड ऑफिस जो दौरो, मौसमियाती तब्दीली ऐं असरनि बाबति ब्रीफिंग वरिती। NDMA चयो आहे त मुल्क जे मथां इलाइक़नि में गैर मामूली बरसातूं पवण जो इम्कान आहे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त मौसमियाती तब्दीलीअ वधंदड़ आबादी वॾो चैलेंज आहे। आलमी बैंक सां गॾिजी मौसमियाती तब्दीलीअ ते कम करे रहिया आहियूं। वफ़ाकी वज़ीर मोइन भुट्टो चयो आहे त पाणी ज़खीरो करण जे सलाहियतनि में वाधि वक़्त जी ज़रूरत आहे। मुसद्दिक मलिक चयो त मौसमियाती तब्दीली सबब मुतासिर थींदड़ मुल्क सूरत हाल जा ज़िमेवार नाहिनि। वफ़ाकी वज़ीर अता तारण चयो त NDMA सूरत हाल बाबति अॻुवाट अलर्ट करण जो निज़ाम जोड़ियो आहे।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतम अख्तियार इरशाद ऑटोस ऐं मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद टोस ते मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर शहर में रोशन आए गेल हाइड्रेट करे संडे फेशियल रेज साफ तरोताजगी और नई टेक्नोलॉजी पता रोशन स्किन एलर्जी निक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरा 3003-8569
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अकजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कर
3: अदा
5: यलन तोड़े गोछेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM पब्लिसिटी कराई कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
3: मुझे दुकान जी बेट
4: कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: रात हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
6: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
7: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
6: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
7: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: लेजर हेयर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिकर के शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद रोड मेहरापुर 03003385569।

0: बाद में।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ओके
1: बाद मैंने कॉल भी नहीं की।
0: ओके लगा दे फिर।
1: टाइटल क्या है एक दफा बताएं।
0: मैं रिपीट कर देती हूँ, आपने कहना है कि
2: okay?
0: काशान ने कच्ची गलियां खुले खेत में खिलती देखी।

0: عشان تكيبانيات بلاك يزمي كنت لك
1: يس
0: اوكي اوكي
1: اوكي
0: काशन चाची कल्याण कुले के तुम्हें देखी काशन चाची कल्याण कुले के तुम्हें देखी काशन चाची कल्याण तुम्हें कैसे मैं चिंती ताशा की सलिया तुम्हें कैसे मैं चिंती देखी ताशा मिल जाती सलिया तुम्हें कैसे मैं चिंती देखी.
1: ओके वेरी नाइस वेरी नाइस. और कुछ कहना है सागर भाई?
0: नहीं है बहुत तबियत ठीक नहीं है.
1: अल्लाह पाक आपको जल्दी से सेहत याबी दे. आमीन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. 03000

0: Okay, next caller लेने जा रही है 0300113488. Next, hello.
1: हेलो,
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: मैं फारूक का बात कर रहा
0: हूँ. ओके, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मोरो से बात कर रहा हूँ.
0: मोरो से बात कर रहे हैं. मुझे बताएं कि पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
1: जी जी.
0: ओके, मुझे ये बताइएगा कि यार, हाँ, टंग
1: ट्विस्टर गाना सुनाओगे?
0: नहीं, गाना तो मैं सुनाऊंगी, मुझे टंग ट्विस्टर सुनाएंगे? टंग ट्विस्टर बोलेंगे, सुनाएं? ओके, तो बोले ओके जी, अल्लाह हाफिज. थैंक यू. गाना सुनाने वाला सेगमेंट नहीं है भाई, कह रही हूँ टंग ट्विस्टर सुनाएं, बोलेंगे हम, बस गाना सुनाओ, गाना सुना दो बस. अच्छा, नेक्स्ट कॉलर. हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम सरदर, कैसी हो? आपका ही इंतजार था.
2: हाय अल्लाह, मेरे इंतजार.
0: ये हाय अल्लाह कितना अच्छा करती हो सरदर्द, एक बार फिर से करना. एक बार फिर से करना, 5 रुपए का. अरे वाह, क्या बात है जी, क्या बात है. अच्छा मुझे बताओ, टंग ट्विस्टर सुना है? ऐसे थोड़ी ना कॉल करती है सरदर्द. वाओ, वेरी नाइस. अच्छा मुझे बताओ, टंग ट्विस्टर सुनाओ.

0: kami sa Tikalia College Academy, Kristibike, kasama kami sa Tikalia College Academy, Kristibike, kasama kami sa Tikalia College Academy, Kristibike, kasama kami sa Tikalia College Academy, Kristibike, kasama kami sa Tikalia College Academy, Kristibike, kasama kami sa Tikalia College Academy, Kristibike, kasama kami sa Tikalia College Academy,
1: Kristibike. Okay, strong. Very nice. ये तो बहुत अच्छा बोला है सरदर्द और कुछ कहना है
0: हाँ कहते यार बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी वहाँ के सर्वाइव किया हुआ इतने दिनों बाद कल सुने
1: इतने दिनों बाद सुनी है ना
0: हाँ वो भी इतनी खूबसूरत गाना
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल और कुछ
0: थैंक
1: यू सो मच अल्लाह हाफिज और मैं सोच रही हूँ कि मैं एक और गाना प्ले करूँ और वो जो एक और गाना है वो कौन सा होगा वो मैं देख रही हूँ मैं सोच रही हूँ एक और ट्रायल करते हैं जी जब तक गाना मेरे सामने आए हेलो
2: अस्सलामुअलैकुम
1: वालेकुम अस्सलाम कौन कहाँ से मोहम्मद ताहिर लोन भाई कैसे ठीक ठाक
2: अल्लाह पाक
1: ओके वेरी नाइस और मुझे बताइए गा के या प्रोग्राम सुन रहे हैं टंग टू सुना बोलेंगे
2: जी बिल्कुल सुना है और बोलेंगे
1: ओके बोलिए बोलिए
2: काशा निकलती हमें देखिए खुद ही कहते हैं चलते जैसी काशा निकलती हमें खुले कहते हैं खुद जैसी काशा निकलती हमें खुले कहते हैं ये चलते जैसी काशा निकलती हमें खुले कहते हैं खुद जैसी काशा निकलती हमें खुले कहते हैं
1: ओके स्टॉप स्टॉप और कुछ कहना है
2: जी और दोस्तों का नाम देते हैं
1: दे दे और नाम भी बताएं अपना प्लीज
2: मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर लोन
1: मोहम्मद ताहिर लोन ओके वेरी नाइस दोस्तों को शामिल कर लें
2: इंदा दिशा में
1: Hafiz, thank you.

0: लोग के साथ साथ कॉलर्स को एंटरटेन करते हैं. एंड नेक्स्ट कॉलर, हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: आपको पहले चैट कर लड़का लैसे.
0: ओके, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आसिफ अली चाचर, मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं? टाइम टू सर सुना बोलेंगे.
1: ये प्रोग्राम सुन रहा थोड़ा सा बताओ. काशान ने कच्ची कलियां खेत में
0: खुले खेत में खिलती देखी.
1: काशान ने कच्चियां
0: नहीं कलियां.
1: काशान ने
0: कच्ची कलियां.
1: काशान ने कच्ची कलियां.
0: आपसे नहीं हो पाएगा, कुछ और बोलेंगे, कुछ और कहेंगे.
1: आपका शो चल रहा हूँ.
0: चले सुनते रहे. एक गाना भी प्ले कर रही हूँ आपके लिए. आपको डेडिकेट होता है जी, आप तमाम लोग जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं. सो हियर कम्स अ सॉन्ग. द सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल बाय बिलाल सईद एंड मेहर ताहिर.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 02424601000।
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर आई

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।

very, very, very nice song. And हम चलेंगे आगे और आप लोगों के बहुत सारे messages और बहुत सारे comments जो कि मुझे receive होते जा रहे हैं, जो comments की तरफ चलेंगे. और हाली सुल्तान ने हमें बहुत सारे comments किए हैं जी, thank you हाली सुल्तान. और नूर हुसैन तुनियो ने हमें thank you हाली सुल्तान. और नूर हुसैन तुनियो ने हमें comment किया है जी, नूर हुसैन तुनियो thank you.

इसके अलावा गाना चेंज करेंगे जी, साथ साथ एंड हर गम अनदर सॉन्ग कमरवल्ले। मेरे ख्याल से मैंने जो प्ले करना था ना, ये वो प्ले हुआ नहीं है, तो हम एक और सॉन्ग प्ले करेंगे एंड ये वाला सॉन्ग हम सुनेंगे, इंजॉय करेंगे, साथ साथ कॉल्स को भी इंटरटेन करेंगे, ठीक है।

हेलो आरजे, बहुत दिनों बाद जॉइनिंग योर शो. अच्छा, और कहते हैं कि बिजी लाइफ इंजॉय शो एंड थैंक यू. ओके जी, थैंक यू टू यू एज वेल. मुझे नहीं पता, आपने अपना नाम भी नहीं लिखा, तो जब आप मैसेज किया करें, जितने भी लोग मैसेज करते हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन किया करें मैसेजेस में, ठीक है. और इसी के साथ फाइनली हम लेंगे आपसे इजाज़त. इंशाल्लाह हमारी आपसे चुटचाट होगी, हमारी चिटचैट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आरजे. सुना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइंस आउट. टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज.

वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि काबीना जी तवानाई बाबति कमेटीअ जो इजलास कमेटी ऑन रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 जे मसौदे में तरमीम जी मंज़ूरी ॾेई छॾी।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ। महफूज और मौसर स्किन केयर, नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर। एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई
3: 93.7 3599 1204।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: brought to you by White Ish Beauty Cream.
1: It's 1:15 p.m.
0: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: दीदी क्या बात है, क्या बात है। इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद है तो जहाँ आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। साथ ही साथ बताते हैं जी कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक क्या लेकर आए हैं, यानी कि आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो मेरे बहुत से लोग हैं, मेरे बहुत से लिसनर्स हैं जो कि बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे होने से मुराद ये कि उनको जो भी चीज ऐसी होती ना, जो भी कह देती हूँ तो वो मान जाती चलिए बातें तो खैर आपसे मनवा ही लेंगे, लेकिन साथ साथ अगर आप भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो लाजमी कीजिएगा। और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ आपको डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, तो उनके बारे में भी आपने जरा सोच लेना है और समझ लेना है कि ये जो प्रोडक्ट आपको बताए जा रहे हैं ये आपकी स्किन के मुताबिक ही है और आपकी स्किन के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद है। चलें जी बातें तो करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल जो पूछूंगी वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप मुझे बताएंगे कि अगर आप, यानी कि मेरे जो लिसनर्स हैं उनमें कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो भाई काम करते होंगे ऑफिस में या फिर बड़े होंगे, तो आप मुझे ये बताएंगे कि अगर स्कूल या फिर ऑफिस में सिर्फ 2 दिन काम करना होता, यानी कि सिर्फ आपने 2 दिन जाना होता और 5 दिन की छुट्टी होती, तो आप बताएं जिंदगी कैसी गुजरती। क्या ये चीज अगर ऐसी हो जाए, सिर्फ आपने 2 दिन जो है या तो ऑफिस में काम कर सकते हैं या फिर 2 दिन आप स्कूल या फिर कॉलेज जा सकते हैं, बाकी 5 दिन आपको छुट्टी होगी, तो बताएं आपकी जिंदगी कैसी होती। ओके जी, अगर आप हमारा शो सुन रहे हैं पहली मर्तबा रोजाना या फिर आप घूमने वाले लिसनर्स हैं, यानी कि चोरी चोरी चुके चुके आप हमें सुनते हैं, तो आप ऐसा करेंगे अपना सेल फोन उठाएंगे, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं और फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा फेसबुक पेज है जनाब। आप जैसे सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। आप आइए जल्दी से हमारे पेज के ऊपर और वहाँ पर आप हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बताइए आप हमारे साथ मौजूद है, कहाँ कहाँ से ज्वाइन करते जा रहे हैं और उसके अलावा कहाँ कहाँ पर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं। ये आप लोगों के ऊपर बात आती है कि आप जरा सा कोऑपरेट किया करें, बताया करें। और जनाब इस्तेमाल करने के लिए आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल भी करा सकते हैं और वो कैसे वो सब कुछ बताएंगे, लेकिन आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो जनाब टॉपिक को जरा दोबारा से रिपीट करते हैं जो लोगों ने नहीं सुना। मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि बताएं जरा, अगर आपका स्कूल कॉलेज या फिर ऑफिस सिर्फ आपने 2 दिन के लिए जाना होता वहाँ और 5 दिन की आपको छुट्टी होती, तो बताएं आपकी जिंदगी कैसे गुजरती। मुझे तो ये लग रहा है कि मौजें ही मौजें होती। बाकी आप अपना बताएं, आपको क्या लगता है अगर ऐसा होता तो फिर कैसा होता। ओके जनाब, साथ साथ यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, जल्दी से पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा। और आदिल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, लिखते हैं सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, ए बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे, अच्छा है दिल के साथ रहें पासबाने इल्म पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे, वाइज़े सबूत लाए जो मेके जवाज में, इकबाल को ये जिद है कि पीना भी छोड़ दे। ओके, और कहते हैं गाना सुनाइएगा, मैं कोशिश करती हूँ आपकी पसंद का गाना लगा देंगे। मोहम्मद वसीम अहमदानी हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, कैसी हो पहचाना मुझे। हाँ जी हाँ जी, हिदायतुल्लाह अहमदानी आपको वेलकम कहा जाता है। वैसे आपका ये लास्ट नेम जो है ना, ये खुद ही आपको पहचान क्या क्या आप कौन है। और सुफियान अहमद हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, आप कैसी हैं, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। और हमारे साथी अली मुर्तजा कहते हैं, तालीम की कमी को तरबियत अच्छी तरह ढांप लेती है, मगर तरबियत की शफाफ को तालीम कभी पूरा नहीं कर सकती। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कहते सलाम एंड गुड आफ्टरनून, प्लीज बोले बोल कफारा क्या होगा, इतना सीडी गाना बोल दिया आते साथ ही, बोल तुम्हारा क्या होगा। अनवर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सदरा भेण, अच्छा अच्छा भामा तवाजी जी का प्योर सिंधियाना हुआ, थोड़ी घट समझनी आया। सो तव्हां शायरी लिखी आहे, वस वस सारंग आसू पूरियूं कर, धरतीअ जी प्यास बुझाए, हर तरफ़ शादाबी कर. वाह वाह वाह वाह, वेरी नाइस. अखलाक बलूच भाई हमारे साथ माजुक देते, हाय सदर, नाइस यो, नाइस यो, थैंक यू, थैंक यू. अनवर भाई कहते बहुत खूबसूरत कसीदा आपने सुनाया, आपके क्या कहने. थैंक यू भाईजान, आपकी समातों का बहुत शुक्रिया. एहसन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मौला अलैहिस्सलाम मदद, ओ माई फेवरेट आरजे मैडम मुस्कान, लालकना की पहचान, मैं भी आ गया, कैसी है आप और आपकी तबीयत कैसी है. मैं भी ठीक हूँ, मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी है, आप बताएं आप कैसे हैं. आबिद परियास्ती हमारे साथ हैं भाई, हेलो. अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं और आपको भी वेलकम कहा जाता है. उदास लड़की कहती है सलाम अलैकुम स्वीटी, वेलकम टू शो. टॉपिक फ्री लाइफ गुजरती, वैसे तो तुम तो वैसे ही फ्री हो, तो अगर तुम भी ऑफिस जाते, कुछ काम काज करती, तब तुमसे पूछा जाता कि बच्चों बताओ जरा ऐसी लाइफ अगर आपकी गुजरती है तो फिर आपको लग पते जाते हैं. बाकी जेके घर में त उन्हनि जे लाइ बि अज़ारा, हू बि चवनि था बाबा असां बि ख़ुशि न आहियूं, बाक़ी आहे केरु ख़ुशि हिन जो पतो लॻाईंदासीं. और चाचा खाली चुनी जो आ चुके, वालेकुम असलाम, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं आप कैसे हैं. और हिदायत अल्लाह कहते काश ये होता तो मैं सिर्फ आपका शो सुनता और कोई काम नहीं करता. सदरा ऐसा होता तो क्या ही बात होती. योर टॉपिक आंसर. अच्छा मोहम्मद जमान भाई हमारे साथ कहते गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू यू माय स्वीट बुआ जी, वेलकम टू यू प्यारे भाई, आपको भी वेलकम कहा जाता है. पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए जरा और बताइए वाई जेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स कहाँ तक पहुँचे, वाई जेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए या फिर अभी तक सोचों में गुम है. जल्दी जल्दी से वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए और अपनी खूबसूरती को जरा बढ़ाते रहिए और मुझे बताएं कि आपके एरिया में मिल रहे हैं या फिर अभी तक नहीं. और मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर कैसे अवेलेबल करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप टॉपिक को फॉलो कीजिए और अपने होने का एहसास दिलाते जाइए. आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए. और यहाँ पर लेते हैं जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, आप बैठे रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा मुझे छोड़ के, मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो. Sponsored by Whitish Beauty Products and D Skin Beauty Products. लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए.
1: GAFM 8. खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए. घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569. जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवहा जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट एं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवहा के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट, हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान. वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर डी, बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान. जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 03-01-91-896-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

तो ना नको बिल्कुल नहीं, कोई मसला नहीं होगा. अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए. अगर आप ये सोच रहे हैं कि बीच में हम थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप रेस्ट भी कर सकते हैं. उसके लिए ऐसा होगा कि जो आपको खूबसूरती मिल चुकी होगी वो हमेशा आपके साथ ही होगी. वह तमाम जी हूँ बबा तक टेंशन नहीं घबराने की बिल्कुल भी जरूरत कोने का. उनका अलावा तमाम अगर पांच करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराने चाहो था तमाम बिल्कुल करायो लाजमी करायो. अगर सफा जरूरी आए तमाम जी आसानी थी वेंदी, तमाम जी आसपास जी माण्हू रहनि था उन्हनि जे लाइ बि आसानी थी वेंदी. सो बिल्कुल ही कमाल हूंदो जेको तव्हां ॾिसी वठंदा. इन खां अलावा वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो अगरि मां ज़िक्र कयां त बिल्कुलु तव्हांखे ॿुधाईंदासीं. वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तव्हांजे लाइ हर तरह जा प्रोडक्ट तव्हांखे मिलनि पिया. आराम सां तव्हां इस्तेमालु कयो ऐं तव्हांजे ख़ूबसूरती खे तव्हां वधाईंदा रहो. ऐं तव्हां जॾहिं ॾिसंदा त तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हांखे मिली वेंदी, पोइ तव्हां पाण ई ख़ुशि थी वेंदा. ओके ठीक, सो ॿुधायूं था. लेकिन उन खां अलावा जिन माण्हुनि असांखे हाणे हाणे ज्वाइन कयो आहे उन्हनि खे बि वेलकम चऊं था. तव्हां पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा रहो. मां तव्हां खां सवाल पुछो आहे, यानी कि प्रोग्राम जो टॉपिक आहे, अगरि स्कूल में आयो या कॉलेज में आयो या वरी तव्हांखे ऑफिस में कमु कयो था या का जॉब कयो था, इहो ईअं अगरि सिस्टम हुजे हा, तव्हां सिर्फ़ ॿ ॾींहं वञो हा पंहिंजे कम ते, पंहिंजे कॉलेज या फिर स्कूल, बाक़ी पंज ॾींहं तव्हांखे रेस्ट करिणो हुयो, त मूंखे ॿुधायो ज़िंदगी तव्हांजी कीअं गुज़रे हा, तव्हांखे छा थो लॻे त पोइ असांजी ज़िंदगी कीअं गुज़रे हा. छो त हाणे त कम कार में बिज़ी आहियूं या सोचूं था अगरि हिकिड़ो ॾींहुं मोकल जो मिले थो त इलाही सारा कम हूंदा आहिनि पेंडिंग में जेके असांखे करणा पवंदा आहिनि. पर जॾहिं ईअं हुजे पंज ॾींहं सिर्फ़ आराम करिणो आहे, सिर्फ़ ॿ ॾींहं असांखे पंहिंजे कम ते वञिणो आहे, त ॿुधायो त ज़िंदगी कीअं गुज़रे हा. उन खां अलावा तव्हां अगरि पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स खे अवेलेबल कराइणु चाहियो था, त पोइ तव्हांखे डायल करिणो आहे 0332734309 0332734309. या इहो नंबर बंदि मिले त पोइ तव्हांखे डायल करिणो आहे 0312502507 0312502507. ही नंबर साइन तव्हांजी आसानी जे लाइ तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए सघो था, चाहे वाइटेश जा प्रोडक्ट हुजनि या वरी डी स्किन जा प्रोडक्ट्स हुजनि. ओके, सो वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स जी अगरि ॻाल्हि कई वञे त वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तव्हांजे लाइ केॾा सुहिणा सुहिणा प्रोडक्ट आहिनि. ॾिसो सुहिणा सुहिणा प्रोडक्ट आहिनि त तव्हांखे सुहिणो बणाए छॾींदा. जंहिंमें तव्हांखे वाइटेश ब्यूटी क्रीम मिली रही आहे, वाइटेश ब्यूटी क्रीम जेका हिकिड़ी नाइट क्रीम आहे जेकी तव्हां राति जे टाइम इस्तेमालु कंदा. सुम्हण खां पहिरीं तव्हां अगरि पंहिंजो फेस वॉश कयो था वाइटेश ब्यूटी सोप सां या वरी वाइटेश फेस वॉश सां, त यकीन ॼाणो तव्हांजी जेका ख़ूबसूरती आहे न सफ़ा वधंदी रहंदी. ऐं ख़ूबसूरती जो तालुक़ु जेको हूंदो आहे न, मां हमेशा तव्हां सां इहा ॻाल्हि शेयर कंदी आहियां त ख़ूबसूरती जो मतिलबु सिर्फ़ु अछो रंग गोरो रंग न आहे हूंदो, ख़ूबसूरती में इलाही चीज़ूं अची वञनि थियूं. जीअं तव्हांजी स्किन क्लियर हुजे, तव्हांजी स्किन ते एक्नी न हुजनि, तव्हांजी स्किन ते रिंकल्स न हुजनि, तव्हांजी

स्किन ते ही अखियुनि जे हेठियां हल्का न हुजनि, तव्हांजी स्किन ते निशान न हुजनि, इहे सभु चीज़ूं अगरि तव्हांजी स्किन तां हटी वञनि थियूं ऐं तव्हांजी स्किन गोरी बि थिए थी त बाबा इहो प्लस पॉइंट आहे तव्हांजे लाइ। त इहे सभु चीज़ुनि खे तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी मां रिमूव करे सघो था ऐं पंहिंजी स्किन खे सफ़ा बेदाग ऐं गोरो बणाए सघो था जॾहिं तव्हां वाइट एश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा। सो वाइट एश ब्यूटी क्रीम जंहिंजे अंदरि एवोकाडो आहे, एलोवेरा आहे ऐं मिल्क आहे, इहे सभु नेचुरल चीज़ूं आहिनि जेके तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाईंदियूं ऐं तव्हांखे सफ़ा वी आई पी सोणो बणाए छॾींदियूं। ऐं वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे वाइट एश जो साबुण मिली रहियो आहे। जेके माण्हू साबुण लॻाईंदा आहिनि उहे साबुण लॻाईंदा आहिनि, जेके माण्हू फेस वॉश लॻाईंदा आहिनि उहे फेस वॉश लॻाईंदा। सो जेका शइ तव्हांखे ईज़ी लॻे तव्हां उहा इस्तेमालु करे सघो था। सो तव्हांखे अगरि ॿुधायो वञे त वाइट एश जो जेको ब्यूटी सोप आहे उहो डिटो कॉपी आहे बाबा वाइट एश ब्यूटी क्रीम जी। सेम टू सेम आहिनि, ॿई हिकु जहिड़ा सफ़ा भाउ भेण लॻंदा, पर जॾहिं तव्हां वाइट एश जो फेस वॉश वठणु वेंदा त वाइट एश जो जेको फेस वॉश आहे न उनजो कलर जेको आहे या उनजी जेका थोरी मां तव्हांखे सुञाणप ॿुधायां त हू ओरेंज कलर जो आहे। तव्हां वरी सोचींदा त बाबा क्रीम जो कलर थोरो ग्रीन आहे, साबुण बि ग्रीन आहे, त फेस वॉश ग्रीन छो न आहे? त फेस वॉश ग्रीन इन लाइ न आहे छो त वाइट एश जेको फेस वॉश आहे उहो वाइटमिन सी सां तयारु थियल आहे। हिन खे थोरो जेको फार्मूलो हुन खे थोरो चेंज कयो वियो आहे जीअं तव्हांखे ख़ूबसूरती मिले। साबुण लॻाईंदे त तव्हांखे ख़ूबसूरती त मिली वेंदी पर जेके तव्हांजी स्किन ते वाइटमिन सी जी कमी आहे, वाइटमिन ई जी कमी आहे, उहा कीअं पूरी थींदी? त उहा तॾहिं पूरी थींदी जॾहिं तव्हां वाइट एश जो वाइटमिन सी वारो फेस वॉश यूज़ कंदा। फेस वॉश यूज़ कयो जीअं तव्हांजी स्किन ग्लोइंग थी वञे, ब्राइटनिंग ब्राइट थी वञे। तव्हांजी स्किन पे अगरि एंटी एजिंग आहे त उन जे लाइ बि तमामु ज़बरदस्त आहे। तव्हां बिल्कुलु इस्तेमालु करे सघो था वाइट एश फेस वॉश। हर स्किन टाइप जे लाइ आहे वाइट एश जा जेके बि प्रोडक्ट आहिनि उहे तव्हांजे हर स्किन जे हिसाब सां तयारु थियल आहिनि। तव्हांजी स्किन ऑयली आहे, सेंसिटिव आहे, ड्राई आहे, नॉर्मल आहे, कॉम्बिनेशन टाइप आहे, हर स्किन जे मथां तव्हां आराम सां लॻाए सघो था। उन खां अलावा वाइट एश जी लवली क्रीम जी तरफ़ अगरि असां अचूं था त वाइट एश जी लवली क्रीम जी त मां छा ई ॻाल्हि ॿुधायां बाबा। एॾो ज़बरदस्त प्रोडक्ट हिकिड़ो तयारु कयो अथऊं जो तव्हांजी हर स्किन जे मुताबिक़ आहे ऐं हर इंसान जे मुताबिक़ आहे। हर इंसान सां मतिलबु इहो त तव्हांजे घर में ॿार आहिनि, बच्चा आहिनि, कुराड़ा आहिनि, जवान आहिनि, मर्द आहिनि, मायूं आहिनि, हर कोई वाइट एश लवली क्रीम जो इस्तेमालु करे सघे थो। वाह साईं वाह, वाह साईं वाह। वाइट एश लवली क्रीम जेका अल्ट्रा वाइटमिन्स जो फार्मूलो आहे जंहिंजे अंदरि 30 वाइटमिन्स जा कैप्सूल एड थियल आहिनि, जंहिंमें तव्हांखे वाइटमिन B3 मिले थो, वाइटमिन ई मिले थो, वाइटमिन सी मिले थो, वाइटमिन डी मिले थो, अहिड़ा खोड़ सारा वाइटमिन्स जेके जेके तव्हांजी स्किन खे नीड हूंदी आहे उहे सभु वाइटमिन्स जी कमी खे पूरा कंदा। उन खां अलावा जेको आहे न वाइट एश लवली क्रीम जे अंदरि तव्हांखे सनस्क्रीम बि मिली रही आहे। सनस्क्रीम खे अलॻि सां इस्तेमालु करणु वठणु, सनब्लॉक ॻोल्हणु पंहिंजी स्किन जे मुताबिक़ सां ॾाढो मुश्किल कमु हूंदो आहे। मूंखां पुछो, मूंखां इहे कशाला मां कटिया आहिनि। अगरि तव्हां चाहियो था त बाबा इहे मुश्किल में तव्हां न अचो ऐं तव्हांजे लाइ हिकिड़ो प्रॉपर सही तरीक़े वारो जेको आहे उहो सनब्लॉक हुजे त तव्हां वाइट एश लवली क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था। तव्हांखे जेको आहे सो ग्लो बि मिलंदो, ख़ूबसूरती बि मिलंदी ऐं तव्हांजी स्किन जेका आहे प्रोटेक्ट भी रहंदी। ये जेके उस जा किरणा हूंदा आहिनि तव्हांजी स्किन खे नुक़सान पहुचाईंदा आहिनि उन्हनि खां तव्हांजी स्किन बि बची वेंदी ऐं तव्हां ग्लो कंदा रहंदा, तव्हांखे सफ़ा VIP रिज़ल्ट बि मिलंदो रहंदो। सो वाइट एश जी लवली क्रीम हिकिड़ी फेयरनेस क्रीम आहे जेका तव्हां हर उमिरि वारो माण्हू लॻाए सघे थो, हर स्किन जे मथां तव्हां लॻाए सघो था ऐं मेकअप जे तौर ते बि तव्हां लॻाए सघो था। तव्हां काॾे वञो था, पढ़ो था, पढ़ायो था, काॾे जॉब कयो था, किथे पार्टी फंक्शन में वञो था, का शादी आहे त तव्हां वाइट एश लवली क्रीम खे लॻाए हीअं चुटकिन में रेडी थी सघो था। उन खां अलावा अगरि तव्हां एक्नी जी वजह सां परेशान आहियो त तव्हां वाइट एश जो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लॻाए सघो था। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको हिकिड़ो मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, हिन जे अंदरि जड़ी बूटियूं एड थियल आहिनि ऐं हीउ आयुर्वेदिक फार्मूलो आहे। सो ही न सिर्फ़ तव्हांजे एक्नी जो ख़ात्मो करण जे लाइ तयारु कयो वियो आहे बल्कि हिन खे तव्हां चेहरे ते लॻाईंदा त तव्हांजे चेहरे जा निशान हुजनि, एक्नी हुजनि या फिर तव्हांजे चेहरे ते कट जो निशान आहे, को सड़न जो निशान आहे, बचपन में कोई चोट लॻी उहो निशान तव्हांजे चेहरे ते मौजूदु आहे, तव्हां हुन खे ख़तमु करणु चाहियो था त तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लाज़मी लॻाए ॾिसजो। सफ़ा VIP अथव, पाण इस्तेमालु थियल आहे मुंहिंजो बाबा। मां तव्हांखे इहो चवां थी त अगरि तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लॻाईंदा तव्हांखे ॾाढो भलो रिज़ल्ट मिलंदो ऐं तव्हांजे चेहरे जा जेके बि निशान आहिनि सभु चीज़ूं क्लियर थी वेंदियूं, तव्हांजी स्किन सवा बेदा गोरी गोरी थी वेंदी ऐं जिते जिते तव्हांजो एक्नी आहे, निशान आहे, कोई कट जो निशान आहे, उन्हनि उन चीज़ुनि ते सिर्फ़ु तव्हां लॻाईंदा। डॉक्टर पिंपल जो जेको ट्यूब आहे न तव्हां पंहिंजे पूरे फेस ते न लॻाइजो, ठीकु आहे? लॻाइण खां पहिरियां तव्हां पंहिंजो फेस वॉश कजो ऐं पंहिंजा हथ चङे तरीक़े सां वॉश कजो। जॾहिं तव्हां क्लीन क्लीन रहंदा, तव्हां पाण खे साफ़ सुथिरो रखंदा त पोइ तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हांखे ॾाढी सुठे तरीक़े सां मिलंदी। सो ख़ूबसूरती हासिलु करणु चाहियो था त बाबा पंहिंजो चङे तरीक़े सां ख़्यालु रखो ऐं उन खां अलावा जल्दी जल्दी पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराईंदा रहो जी तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हांखे मिले ऐं तव्हांखे ख़बर हुजे।
त तव्हां कहिड़ी जनरल स्टोर ते वञी पंहिंजे लाइ वाइट एज जा प्रोडक्ट्स परचेज करे सघो था। बिल्कुल जी, तव्हां सां गॾु मौजूदु आहियो। किथां किथां ॿुधो पिया मूंखे ॿुधाईंदा, ऐं हा टॉपिक जेको पुछो आहे हुन जो जवाबु ॾींदा हलंदा, ऐं तव्हांजा फीडबैक्स आहिनि बिल्कुलु पढ़ूं था। पर गानो हलायो आहे, अचो त गानो बि ॿुधूं।

हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी ट्यूसडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आर्टिस्ट सिस्टर सिद्रा मुस्कान जी, आप कैसी हैं? ओए प्यारी जी जी, शायद ऐसा ही है। और कहती हैं टॉपिक के ऊपर बात करती कि कोई प्राइवेट जॉब करूंगी उन दिनों में। अच्छा, सियाणी तव ॾिसो ॾिसो। यानी नमाज साबित हो तो तव्हांखे वांदो विहण ना ही दो। सही सही। फज़ीला सिंधी मर्शद मौजूद है, वेलकम कहा जाता है।

की पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, बताइए कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं और साथ साथ वाइटेश का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। चाचा खालिद कहते हैं कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, इन वाइटेश लवली क्रीम शो में। सही है जी। इकबाल आशरी हमें सुन रहे हैं मीरपुर खास से, भाई को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। हबीबुल्ला थेबू हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम जी। निदली कहती है कि आई मैं तो चाहती हूँ कि कोई जॉब करूँ बट ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ जी, वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है। अनमोल भाई कहते चापिक अगर तनख्वाह पूरी 5 दिन वाली मिले तो ये स्कीम दुनिया की बेहतरीन स्कीम साबित होगी, लेकिन अगर तनख्वाह भी 2 दिन के हिसाब से कर दी जाए तो फिर इंसान कहेगा भागो भाई 5 दिन का काम ही भला। नहीं नहीं, तनख्वाह को पूरी मिलेगी, सुकून रखें। ओगी जी किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा, स्मार्ट हाजिर है आपके लबों पर स्माइल लाने के लिए। भाईजान को खुश आमदीद कहा जाता है। दीदार अली बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम। दर्द दिल आ चुकी हैं वाश। वालेकुम अस्सलाम कहती हैं माय फेवरेट आरजे चंदा जानी, आप कैसी हैं, वेलकम टू शो, खुश आमदीद। अली मुर्तजा कहते हैं टॉपिक पर 2 दिन काम करके 5 दिन सोता ही रहता, ना किसी से बात करो ना किसी के सुनो। सुकून वाली लाइफ हर किसी को चाहिए वाकई।

क्रिएटिव पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और साथ साथ जनाब आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डीज़ स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डीज़ स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जल्दी से बताइए इतनी जनाब ये कंजूसियां आखिर किस लिए मैं ये बात समझ नहीं पाती हूँ तां पांजे चेहरे सां भी लेखा कयो था आईली अल्लाह साईं डो ॾींदव

अच्छा निदा, आपने जो गाने की फरमाइश कर दी ना, ये गाना मैंने कल ही लगाया था 5 बजे वाले प्रोग्राम में। किशोर भाई कहते हैं सॉरी, आज मुझे कंपनी जो वाईफाई हले न थो, बाकी नेटवर्क जी अमा के खबर आ टॉपिक बुधो ही कोना है। हाँ बुधो आए आना कौन बुधो है। अच्छा दर्दी दिल कहती है अपनी जहनी सुकून के लिए 3 चीजें मुख्तसर रखें, अल्फाज, तवक्कात और लोग। बिल्कुल जी सही बात है। अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं कि हंसते दिलों में गम भी है, मुस्कुराती आंखें नम भी है, दुआ करते हैं आपकी खुशी कभी ना रुके, क्योंकि आपके हंसी की दीवाने हम भी हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।

बहुत ही प्यारा गाना हमने इंजॉय किया. एक और प्यारा गाना हमारी लिस्ट में है तो वो भी हम साथ साथ सुनेंगे और साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं जी, तो ज्वाइन करते जाएंगे. और उसके अलावा मुझे बताएंगे कि अगर आपको ऐसी एक मतलब ऐसी एक चीज मिल जाए, आपको सिर्फ दो दिन, या तो आप कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, या फिर अपनी जॉब पर जाएं, सिर्फ दो दिन जाएं, ठीक है, बाकी पांच दिन आपने सिर्फ आराम करना है, तो बताएं जिंदगी कैसी गुजरती.

जी कश्मोर से एक लाख भाई हमारे साथ के थे सिद्रा, प्लीज प्ले गानों हलायूं था बाबा हलायूं था। और हमारे साथ मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर, वालेकुम अस्सलाम बाजी, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है और सॉन्ग सुनाए हुमेरा चन्ना का कोई भी अच्छा सा, ठीक है भाई की लगा है, भाई को गाना सुनाएंगे जरूर से। और यहाँ पर ईशा हमारे साथ है, ईशा आपको वेलकम कहा जाता है। और उसके अलावा हैं जी मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर भाई कहते मेरी प्यारी बेना सिद्रा मुस्कान। हाँ जी भाई कैसे है, ठीक ठाक है। अच्छा अच्छा खालिद आप पेनर पर मौजूद हैं, आपको भी वेलकम कहा जाता है। रसूलाबाद से आबिद शंबानी भाई कहते हैं दोस्तन खे अस्सलाम वालेकुम, टॉपिक अदी कई बंदा बाकी डी है वही अल्लाह अल्लाह कहूँ हाँ बाबा। अच्छा ये सलाम भाव अभी ज्वाइन किया तो फर्स्ट टॉपिक अब अच्छा कहते हैं अब छुट्टी तो बस ख्वाब ही बन गया है, जब मैं लाड़काना में था तो भाऊ अपनी हाँ ये तो बात है वैसे अपनी मर्जी से जाता था, अब अपना काम बस पूछे मत, खबर पैची वही था न माना चलें जी भाई इंजॉय करिए अपनी इस जिंदगी को भी, क्योंकि आगे जो है वो क्या पता आगे। मुझे ये लगता है कि हमारे पास जो ये अभी दिन मौजूद है ना, इनको अच्छे तरीके से इंजॉय करना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि आगे हमारे लिए अच्छे दिन हैं, लेकिन ये हमें लगता है ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जो आपके पास मौजूद है उसमें खुश रहने की कोशिश किया करें। और हमारे साथ रियाज महर, वालेकुम अस्सलाम रियाज महर।

हाँ जी, अब मान जाए अभी वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर ले। और यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं। वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2 p.m.
1: This time check.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: आजाद कश्मीर के मीरपुर डिवीजन में चूंड माहौल तकरीबन पुरअमन रहो। 13 तकन मां 9 ते नूली कामयाबी माणी आहे। 4 सीटों पीपल्स पार्टी खटियूं आहिनि। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त मीरपुर डिवीज़न में कुझु हंधनि ते अणवणंदड़ वाकिया पेश आया। हिकु ॼणो फ़ौत थियो, 6 वॻोड़ियुनि खे सोघो कयो वियो। वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम चयो त चूंडनि जो पुरअमन ऐं शफ़ाफ़ रियासत जी कामयाबी आहे। चूंडनि में अॻवाणनि ऐं कारकुननि जी महिनत सबबि कामयाबी माणी आहे।

0: ताईं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम। अदा
6: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
5: न? अदा
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
5: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस त ॿुधा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
6: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385 69।

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
1: Whitish and D-Skin Beauty Show is sponsored किया जा रहा है Whitish Beauty Products and D-Skin Beauty Products के तावन से। आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे, अपने होने का एहसास दिलाएंगे और साथ ही साथ आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ये जरूर बताया करें, ठीक है। ये जरूरी बात है, जो कि आप बताते नहीं है वो अलग बात है तो बताया करें भाई, अच्छी बात है। और इससे क्या होता है ना, हमें पता चलता है एक दूसरे से, हम जो है ना वो असा बाखबर रहंदा आयो, समझो था। तो बिल्कुल तमाम बुधाईंदा रहो मुखे त केड़ा कड़ो प्रोडक्ट आए जेको तमा इस्तेमाल कयो आए, अई केड़ो प्रोडक्ट आए जेको तमा जे एरिया में अन्य तई कोन मिली रयो आए। तो अक्सर या गाल भी थोड़ी कंफ्यूज करे विजंदी आए त तमा जे एरिया में प्रोडक्ट मिलन कोन पया, तो जदी मिलंदा तदी तमा के वठण में भी आसानी थी वेंदी। सो तव्हां काइंडली ईअं कंदा कयो, पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते हलिया वञो, उन्हनि खां मालूमात वठो त किथे किथे अवेलेबल आहिनि, किथे किथे अञा ताईं जेको आहे सो अवेलेबल कोन थिया आहिनि। ऐं अगरि मिलनि पिया त उहा तव्हांखे ख़बर आहे त तव्हां वेंदा वञी वठी ईंदा, अगरि नथा मिलनि त उन जो इहो हल आहे त तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते वञी उतां पुछा करण खां फौरन भाउ जेको आहे सो तव्हां अवेलेबल बि कराए सघो था। ऐं हाणे जेको आहे असां प्रोग्राम जे ॿिए घंटे में अची विया आहियूं, त बिल्कुल बाबा तव्हांखे ॿुधाईंदासीं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में बि। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगरि तव्हां इस्तेमालु करणु चाहियो पिया त डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जी सभ खां बहितरीन ॻाल्हि इहा आहे त हीअ ख़ासि करे जेको आहे न उन्हनि माण्हुनि जे लाइ तयारु कयो वियो आहे जिन माण्हुनि जी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हूंदी आहे। ऐं सेंसिटिव स्किन हुजण जी वजह सां ईअं थींदो आहे त तव्हां प्रोडक्ट इस्तेमालु न करे सघंदा आहियो, ऐं तव्हांखे थोरो ख़ौफ़ हूंदो आहे, भउ हूंदो आहे त बाबा असां अगरि हीउ प्रोडक्ट लॻाईंदासीं त किथे असांजी स्किन न ख़राब थी वञे। अगरि तव्हां बि ईअं सोचो पिया त तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में ॿुधायो वेंदो जी, तव्हांजी जेका इहा थोरी आहे न त बाबा असां लॻाईंदासीं त स्किन ख़राब थी वेंदी, उहा चीज़ जेका उहा क्लियर थी वेंदी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी अगरि तव्हांखे ॻाल्हि कई वञे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां इस्तेमालु कंदा त एतिरो ज़बरदस्त क्वालिटी जो प्रोडक्ट आहे जेको मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, जेके डॉक्टर्स जे हिसाब सां तयारु कयो वियो, डॉक्टर जी निगाहुनि जे साम्हूं हिन खे तयारु कयो वियो आहे, ऐं मेडिकेटेड फार्मूलो आहे। सो हिन जे अंदरि उहे सभु चीज़ूं एड आहिनि जेके तव्हांजी हिकिड़ी सेंसिटिव स्किन खे सही करण जे लाइ ऐं सेंसिटिव स्किन खे फ़ाइदो ॾियण जे लाइ एड कयूं वयूं आहिनि। उन खां अलावा अगरि तव्हां इहो सोचो पिया त डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ़ु सेंसिटिव स्किन वारनि माण्हुनि जे लाइ आहे त न बाबा ईअं बि नाहे, ऐं जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा त हीउ हर स्किन जो जेको माण्हू आहे न लॻाए सघे थो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका स्पेशली तयारु थियल आहे जंहिंजे अंदरि माइक्रोबीट्स फार्मुलेशन आहे, वाइटमिन ए बीट्स आहे, अल्फारबुटीन आहे, कॉजिक एसिड आहे, ग्लूटाथायोन आहे, इहे सभु चीज़ूं आहिनि जेके तव्हांजी स्किन जे लाइ फ़ाइदेमंद आहिनि, ऐं तव्हां जॾहिं इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे सफ़ा घणो फ़ाइदो पहुचंदो। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां लॻाए ॾिसो, मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, सिर्फ़ु ॿ रातूं अगरि इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे सफ़ा VIP रिज़ल्ट मिलंदो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी सभ खां बहितरीन ॻाल्हि इहा बि आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे अहसासु थींदो त वाक़ई तव्हां केॾा सुठा प्रोडक्ट लॻायो पिया, सफ़ा प्रीमियम क्वालिटी जा प्रोडक्ट आहिनि। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे। सो ही ॿई चीज़ूं तव्हां गॾु इस्तेमालु कंदा न मिलंदा त तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते हलिया वञो ऐं उतां तव्हां मालूमात वठो, अवेलेबल आहे त ठीकु बढ़िया, नाहे अवेलेबल त पोइ तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते वञी अवेलेबल कराए सघो था। सो तव्हांखे बसि नंबर ते राबितो करणो हूंदो आहे, बसि सिर्फ़ु एतिरो कमु आहे जेको तव्हां कंदा, उन खां पोइ बाक़ी जेको कमु आहे सॼो हू वीचारा कंदा, समझो था। सो तव्हांखे डायल करणो आहे 0332738439 या वरी ॿियो नंबर आहे 0312502599।

ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि नाइट क्रीम आहे जेके तव्हां राजे टाइम इस्तेमालु कंदा, इस्तेमालु कयो बाबा, सोणा सोणा थियो, ख़ूबसूरती हासिल कयो ऐं सफ़ा घणा प्यारा प्यारा थी वञो। उन खां अलावा मर्द मायूं सभी लॻाए सघनि था ऐं नथा मिलनि त तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल बि करायो। ऐं जनाब हाणे तव्हां असां सां गॾु मौजूदु आहियो त तव्हां पंहिंजे हुजण जो सबूत बि ॾियो था ऐं तव्हां शामिली प्रोग्राम थींदा वञो पिया। उन खां अलावा जेके बि माण्हू असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, तव्हांजा बिल्कुलु मैसेजिस आहिनि, फीडबैक आहिनि जेके असां शामिली प्रोग्राम रखूं पिया। पर हिते जेके तव्हांजी पसंदि जा गाना आहिनि त ज़रा गाना बि ॿुधी वठूं था ऐं गाननि जी तरफ़ अचूं था त हीउ वारो हिकिड़ो गानो आहे जेको साहिर बगाची आवाज़ में गानो आहे, सो असां हीउ वारो गानो ॿुधंदासीं।

अच्छा तव्हांजे कॉमेंट सां जल्दी जल्दी मथे मथे भॼंदा वञनि था ऐं उन खां अलावा जेके जेके माण्हू असां सां गॾु मौजूद आहिनि उन्हनि जे कॉमेंट्स खे बि पढ़ंदा हलंदासीं बाबा ऐं ॾिसूं था त केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे जेके माण्हू असां सां मौजूदु आहिनि फेसबुक ते पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो ठीकु आहे अच्छा राशिद बलोच हमारे साथ हैं राशिद बलोच भाई क्या कहते हैं

0: करोगे कैसे गुजारा। ओके जी राशिद बलोच लिखते हैं कि आजमाए ॾिसो
1: ये हक है तुम्हारा
0: जिनसां तव्हां चङायूं कयूं हूंदियूं जिनसां तव्हांजूं चङायूं थियल हूंदियूं तव्हांजूं गिलाऊं बि उहे ई कंदा वैसे ॻाल्हि सही आहे राशिद भाउ अच्छा रुखसार मरी भी असो प्रोग्राम बुधे पे रुखसार मरी तुम मोहब्बत प्रोग्राम बुध पाया और ये गुलाम रहीम बलोच हमारे साथी वालेकुम असलम कहते अदा प्रोग्राम जबरदस्त आए तुम प्रोग्राम बुध पाया थैंक यू सो मच अदा किशोर भाई कहते हैं कि अदा मेरे लैपटॉप में हमेशा गूगल क्रोम न्यू टैब ओपन होता है जिससे मैं आपको चोरी चोरी सुनता हूँ ना मैडम को पता भी नहीं चलता और किसी और को तो आज वाईफाई नहीं चल रही है तो बस थोड़ा मसला है चलें जी कोई बात नहीं वैसे ये आजकल हम ये सोच रहे थे कि नेटवर्क खराब हो गया लेकिन आजकल वाईफाई का भी सेम हाल है
1: अब तुमको मार डाले
0: बस क्या ही कर सकते हैं
1: ये जुदाई अब तुमको मार डालेगी हमारी ये जुदाई मिलने कभी आए तो मिलेंगे ना दोबारा
0: हाँ जी कभी भी नहीं तौबा कर ली

अच्छा मोतिया से थानी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम चाचा खालिद, कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम गुड है, बताओ ऑरेंज कलर किसका है? डी स्किन ब्यूटी क्रीम का तो ऑरेंज कलर बिल्कुल नहीं है, ऑरेंज कलर जो है वो व्हाइट एज के फेस वॉश का है, ठीक है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो व्हाइट है, लेकिन फेस वॉश जो है वो थोड़ा सा उसका जो कलर है ना वो मतलब ऐसा कलर है जिसके अंदर ब्लू है और व्हाइट है, हल्का सा ब्लू कलर, लाइट सा ब्लू कलर और व्हाइट कलर, इतना ये प्यारा कॉम्बिनेशन है कि आप परचेज करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वाह जी वाह हम कितने अच्छे प्रोडक्ट का इंतखाब कर चुके हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश आप ट्राई करके देखिए। डी स्किन फेस वॉश के बारे में आप लोगों को बताते चले, तो डी स्किन फेस वॉश जो है ये हाइलूरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, जो कि आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन का ख्याल रखने वाला प्रोडक्ट है। आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है, डीप क्लीन हो जाती है और हाइड्रेट भी रहती है।

जी किशोर भाई जान, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये हमारे साथ ही स्मार्टू गोपांग कहते हैं, विद रिस्पेक्ट मैं नाराज हूँ आपसे, मेरा सॉन्ग प्ले नहीं किया मंजू सखरानी का, मैं नाराज हूँ आपसे। अरे मंजू सखरानी का कौन सा गाना बताएं, आपके लिए लगा देते हैं। अखलाक भाई कहते हैं कि छा गाल कजे वाइट एश क्रीम जी, हाणे कुराड़ा कुराड़ियों भी जवान थी वेंदा, बिल्कुल जी सही था जो।

अच्छा गुलाम रहीम बलोच कहते हैं पोई जिंदगी डाडी भली गुजरे हैं कमाए वेठो खाओ सही गाला वैसे। अच्छा निदली कहती है कि ऐसा लग रहा है इस सॉन्ग पर ये अच्छा साजिद हुसैन सुमरो भाई हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम कहते हैं नाइस योर शो व्हाइट एश वाह वाह बेहतर है जी क्या बात है आप हमें सुन रहे हैं और व्हाइट एश का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहम्मद समान कहते हैं दिस टॉपिक इज वेरी सैड देन यू विल ज्वाइन अस फॉर टू डेज सो वी डोंट वांट वैसे ये बात तो बिल्कुल सही है कि मैं सिर्फ आऊं प्रोग्राम करने सिर्फ दो दिन पांच दिन की छुट्टियां मेरे लिए तो मजे लेकिन आपको ये अच्छा नहीं लगेगा।

अरे मैं तो चाहती हूँ कि बस मैं प्रोग्राम ही ना करूँ, बस मुझे सैलरी जो है ना वो मिलती रहे. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना. तो ये बात है, हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो ना चाहते हुए भी हमें करनी पड़ती हैं. तो बिल्कुल जी, आप ऐसा करें कि आप डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर लें. ये जो चॉइस होगी ना आपकी जिंदगी में, ये बहुत कमाल की चॉइस होगी. क्योंकि आपकी खूबसूरती जो है वो अगर डल हो चुकी है, चेहरे पर बहुत ज्यादा मसले आ चुके हैं, आपकी स्किन ऊपर से सेंसिटिव है, तो आपको चाहिए कि आप व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती को बढ़ाएंगे और हमेशा के लिए पाले पाले हो जाएंगे. अली मुर्तजा कहते हैं कि ये इस सॉन्ग वाला सीन चल रहा है आजकल मेरे साथ, समझ कुछ नहीं आ रहा पर मजा आ रहा है. बिल्कुल जी सही है.

छा माना मां गानो समझण जी कोशिश कयां पई पर सही आ समझी कोने सकया सी अच्छा ये हमारे साथ है प्लीज प्ले महबूब म्यूजिक चलाइएगा मेरी फरमाइश और शहबाज जमाली हमारे साथ है नवाब शाह से आपको वेलकम कहा जाता है अच्छा ये कहते हैं भाऊ ये सब खुशी का काम है अच्छा इस पर एक पोएट्री है लिखते हैं कि या इलाही क्या करूं जालिम जमाना बन गया जो वक्त था आराम का वो कैद खाना बन गया भाई ये मतलब सारी चीजें खुशी के ऊपर जाती हैं खुशी सुन रही होगी हमें देखो खुशी मैंने कुछ नहीं बोला अच्छा ये मौजूद है अस्सलाम वालेकुम अदी गोठ नूरपुर खान शहबाज खान खोसू हमारे साथ अदी गानो बुधराए जो बिल्कुल बात आ जे गाने हलाने की कोशिश कयो था तवा जो मोहब्बतवान प्रोग्राम बुधो पया और हमारे साथ ही अस्सलाम वालेकुम मौलवी इस्लाम अदत डॉक्टर हसीना सोमरो अदी भेण असा के गानो बुधाए जो फायजा अली जो बोला हन तावीज करे तो के मुखा धार करण जो हा ठीक है यो गानो हलाइंदा सी आई थैंक यू सो मच तवा से गुड मौजूद आयो अच्छा डॉक्टर हसीना सुमरो तमा बीहर भी सेम मैसेज शेयर करे सडो आई सोने जलाई भी थैंक यू चोनी कहती है आपी जान में कल वापस जा रही हूँ अरे भाई बहुत दुख हुआ अब आप हमारा शो नहीं सुनेंगे सजाद अली जमाली हमारे साथ नवाब शाह से कहते हैं सॉन्ग प्ले करें मुमताज मौलाई का सोना जिद न कर मां हलाया थी भा सबनी जो फरमाइश हलाइंदा सी मुखे लगे थो तो फरमाइशू कुछ वदी वयू आहें सो थोड़ो हाने सबर कयो ब्रेक लगाए पांजी फरमाइशन ते आई दे टाइम भी थियो आए बाबा असा भी ब्रेक लगायूं था पांजी गालन ते शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो टाइम थियो आए वरी मोटी तमारे जल्दी जा थी मां ओही वनी ओही मोटनम सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए

0: ये FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: लाड़काने वासन लाए खुशखबरी, डॉक्टर अजीत कुमार सचदेव MBBS FCPS डर्माटोलॉजी चमड़ी जे बीमारियों जो माहिर हिते मोहिड़ा डड्र मल्लो पुरानी खारिश वार चरो पुरानो फट चिटरी लैशमिनासिस चेहरे जा दाग बग न
4: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूहू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMB इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865453।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर के रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई
4: 3592104 असलाम वालेकुम अदा वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही नथो छा कजे अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई न अदा यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेहरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाबु जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलबु हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी थींदी आहे।
5: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस त ॿुधा।
6: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहे और खूबसूरतियां हासिल करते रहे। मुन्नवर अली मुगल भाई हमारे साथ मेरे को खास कहते हैं, या इलाही बड़ा नाजुक जमाना है, दिलों में बुक्स रखते हैं, बजाहिर दोस्ताना है, बिल्कुल भातमा वाजी गाल कई ये आहे बाबा भाई वरी अल्लाह बचाए एड़न मानन का असान जी तोबा ओके जी खान जुदा करण जो गालियों कन था छो था कयो बाबा ये अल्लाह से डो नींदा।

0: ब्यूटी क्रीम था बैठो ओ भी उगालियों का जो
1: तू मुखे महा को नहीं तो खे सोन में तोरे वठा दूं
0: अच्छा जयपाल भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कहते ना हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है बिल्कुल नहीं ये लगे थो मुखे भी इरम वाजू खाब डिटू आतम हाँ फुलजी स्टेशन का फौजी पठान खान खोसो हमारे साथ है सिद्रा मुस्कान असा जी फरमाइश छो न था हलायो न त जेड़ो कंदासी फौजिया सुमरो चौ से शहर छडे वने या अलाए अगते छाए तमा जी फरमाइश लाइंदासी बाबा जेड़ो न कयो असा जेड़े वारा मानु नायो बस सोनी आप अकेली ही चली जाए वरियाम हमारे साथ हैं बिरयानी खाओ तो हाजिर आए वरियाम तुम बिरयानी खाओ बाबा बिरयानी नालो अतव भूख लगी वही अच्छा फजीला सुधरी वनो बाबा सुधरी वनो ये चाहो भी ना तमाम बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी जो सही है
1: तो खे सोन में तोरे वठंदम
0: मैंने प्यार तुम्हें से किया है भाई ममताज मलाई सही गाना रमजान अली हमें सुन रहे हैं रमजान भाई खुशामदीद कहा जाता है आपको वाकई अज पोइट्री पढ़ने जो मूड ना है सो स्किप स्किप स्किप
1: दिल जे पसंद जी का कीमत न होती है
0: हाँ बाबा गोल्ड मांगो थी वो आ इसमें तुम्हारा घर क्या तुम्हारी पूरी जायदादें क्या मतलब सब कुछ चला जाएगा फिर भी तू तोरे न सकंदे
1: हाँ
0: जी सब कुछ चला जाएगा फिर पछताएंगा

मूंखे जी तव्हां जी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो बाबा, पहिरीं ॻाल्हि त इहा अथव जी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हांजे एरिया में नथी मिले त पोइ तव्हांखे डायल करिणो आहे 03125025907. इहो नंबर बंद आहे त वरी ॿियो नंबर आहे 03272738403. ऐं जी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा तो बिल्कुल जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम खास करके उन लोगों के लिए भी तैयार की गई है जो कि आप लोगों की स्किन के लिए ऐसा मसला हो जाता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर पाते, यानी कि आपके चेहरे की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है. तो सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई है. एक मयारी ब्यूटी क्रीम है, ये आपके जल्द को नमी फराहम करती है, चेहरे को नरम मुलायम बना देती है, तरोताजा रखने में भी मदद देती है. इसका बाकायदा इस्तेमाल आपके जल्द की बेरोनकी भी खत्म हो जाती है, तो वो भी वापस लाई गई और आपका चेहरा साफ, रोशन और दिलकश बन जाएगा. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, जिसमें शामिल है जनाब बहुत सारी चीजें जैसे विटामिन बीट्स, माइक्रो बीट्स, उसके अलावा अल्फा

आर्बोटीन, कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, ये तमाम चीजें आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। उसके साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है, जो कि आप लोग लाजमी लीजिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम क्रीम ही नहीं लगाते हैं, तो चलिए आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं लगाएंगे, तो आप डी स्किन का फेस वॉश परचेज करके देखिए। डी स्किन फेस वॉश जब आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि भाई फेस वॉश एडो भलोआ त क्रीम त वठो जरूरी, तब तां क्रीम वठंदा इस्तेमाल कंदा त तां के मजो अची वेंदो। सो डी स्किन फेस वॉश लगायो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो, न मिलन था त नंबर जेको बुधायो उन्हनि ते राबतो करे वठो।

है सोने की चैन। सोन मांगो दिया था छू भला सबने के सोन एडो याद आए। भला आर्टिफिशियल भी तो मिले तो ने। हाँ जी कॉपी आए तो वाइब ओरिजिनल जी इंदी आए हकीकत। और ये कहते हैं सोन में तोरे तो सही अगर महबूब एक मणका मते जो निकतो थे वही गाला ना जो आते इसमें सब कुछ हलो बिंदस बाकी नो ही ज्यादा सोन हो जाए पर यो पॉसिबल ना है यो अगी भाषा आकंदा हुई हाँ मानू न करे सकंदो ना नको बिल्कुल नहीं।

ओके जी, ये गाना और ये ड्रामा, क्या बात है, दोनों कमाल। अच्छा, ये भाई जनाब कहते हैं, भाई साहब कहते हैं, कौन कमबख्त यहाँ गाने सुनने को आता है, हम तो आते हैं आपको सुन सके, आपकी मोहब्बतें समेट सके, आपके लबों पर स्माइल ला सके। किशोर भाई हमारे, क्या बात है। ये वैसे कौन सी मूवी का डायलॉग था, देख नहीं रही ना तो जरा भूल चुकी हूँ।

अपना ओके जी अखलाक भाई कहते हैं शुक्र रहा असा कान का है सिद्रा के नेट ते बुदू था हो गया है तू तारी हाँ भाई जी मतलब टेक्नोलॉजी जो दौर आए तो मानो नवा फायदो वठे सही था जो अली नवाज खान हमें सुन रहे हैं भाईजान आपको वेलकम कहा जाता है रिजवान अली भाई हमारे साथ हैं कहते अगर कोई आपको खो देने के बाद खुश है तो यकीन मानो उसको आपकी परवाह कभी नहीं थी हाँ सही था जो अच्छा दीदार अली बिरोही कहते आज कोई गाना प्ले करो हेडा गाना बुधरा थी मामा अन्ना अंदर नहीं ठहरे होते अच्छा भक्त अली सियाल भाई हमारे साथ मौजूद है वेलकम कहा जाता है दर्द दिल कहती टॉपिक चंदा मैं कुछ भी करती वैसे भी मैं कुछ नहीं करती वैसे भी मैं आवारा हूँ आवारा नहीं इसको निकम्मी बोलते हूँ

ऐसे लोगों के कमेंट्स ऊपर भी चले गए होंगे, तो समझ जाइएगा जिनके शामिल ना हो सके, ठीक है। और बाकी तो राशिद खुड़ो हमारे साथ है, वेलकम जी वेलकम। और हाले सुल्तान हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम, हेलो कहते हैं आपको हाले सुल्तान, इतना मुश्किल नाम है आपका। अच्छा मुमताज अली भाई हमारे साथ कहते इतनी वफादार नहीं, इतनी वफादारी नहीं कर किसी से, यूं मदहोश होकर इकबाल, ये लोग एक खता पर हजारों वफाएं भूल जाते हैं। आए हाय केडी भली गाल कयो। आशिक खास के लिए हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम, भली का चौथा प्यारा भा तमाम के भी प्रोग्राम पसंद अच्छे पे सो मोहब्बतूं आइन। और वफा शहजादो मक्सी हमारे साथ है, गोठ मोहम्मद सफर मक्सी लाड़कानी खान, ओके जी भाई आपको खुश आमदीद। हिदायतुल्लाह कहते वैसे मैं रात वाला लिसनर हो गया हूँ, अब मैं आपका शोर रात में सुनता हूँ। चलें जी, और क्या काम काज भी जरूरी है ना जिंदगी में, बस मुझे ही तो नहीं सुनते रहेंगे ना, ये चीज मैं समझती हूँ, इसीलिए किसी से कोई शिकायत ही नहीं। अच्छा दीदार अली बिरोही भाई थैंक यू सो मच। और हैप्पी गर्ल कहती है आज मैं भी आ गई लास्ट लिंक में, और चलें जी थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं।

दर्द दिल कहती है अब देखना चंदा फुल इस बीन में कमेंट्स पढ़ेंगे। बिल्कुल जी ऐसा ही है। बक्तली सियाल भाई थैंक यू सो मच। और निधड़ी कहती है कोई नब्बा चुप करे हुए। अच्छा हैप्पी गर्ल थैंक यू आप हमारे साथ क्या कहती हैं। शाम के प्रोग्राम में मिलते हैं। बिल्कुल जी शाम के प्रोग्राम में मिलते हैं। अली मुर्तजा चौथा हवाला भी माना महंगा थी भैया। हाँ हवाला भी अजकल अड़ा न कहो न जेके महसूस थे तो ये हवाला आहिन समझो था तमाम डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए सको था यो तो अफोर्डेबल आहिन सो तमाम वणियो वठी छु अच्छा मोहम्मद वारिस जूनी जो हमारे साथ है। ओके जी आपको भी वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। अच्छा टॉपिक वारो कमेंट जिको आ ना मां डठो ही ने तवा जो शायद वाकई मते बदी वयो या नेट जी वजह से फांसी पयो के तारन में उलझी वयो अच्छा शहबाज जमाली भा थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं। और ये हमारे साथ और कौन है गानों शाह मतलब खत्म थी उन्होंने हले तो हले तो

बिल्कुल जी, गानो सफ़ा भलो आए ही गाने जी फरमाइश हिदायतुल्लाह अहमदानी कई हुई असां के बाकी हो जे के गाना रहजन पया ना जे के नहलाए सघिया आयो कुछ कुछ गाना रहजी वया आहिनि सो उहे मां पंजे बजे वारे प्रोग्राम में हलाईंदा ऐं जे के सैडी थोड़ा गाना हुजनि ना मतलब थोड़ो ईअं लाइट हुजे उन्हनि जो टोन उहे पंजे बजे वारे प्रोग्राम में ॾिसंदा कयो जे उहे हलाए करे पोइ मां उन्हनि ते पोएट्री पढ़ी सघां सम्झो था सो पंजे बजे वारे प्रोग्राम में अचिजो ऐं हा छो न ईंदो भला अचो न उहो बि तव्हांजो प्रोग्राम आहे ऐं तव्हांखे ख़ूबसूरती जो ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा आहियूं सो तव्हां ख़ूबसूरत थियो बाबा सभिनी जो हक़ आहे ख़ूबसूरत थियण ऐं पंहिंजे ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु ज़रूरु कजो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले त तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे वाइट एज जा प्रोडक्ट बि इस्तेमालु करणा आहिनि वाइट एज जा प्रोडक्ट जेके न उहे बि इलाही सारा प्रोडक्ट आहिनि यानी कि वाइट एज जी लवली क्रीम आहे फेयरनेस क्रीम आहे एक्नी जो ट्यूब आहे नाइट क्रीम आहे साबुण आहे फेस वॉश आहे खोड़ सारा प्रोडक्ट आहिनि जेको बि तव्हांखे सूट करे तव्हां बसि वञो वठी अचो ऐं इस्तेमालु करणु स्टार्ट कयो सो वरी मिलूं था पंजे बजे वारे प्रोग्राम में पंहिंजो ओ हेॾो सारो ख़्यालु रखंदा ओ हेॾो सारो किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत कयूं था मोकिलाणी न आहे बाबू सलामत सां सलामत अलाह हाफ़िज़ बाय लव यू

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी।
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज जीए FM 94।

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94।

0: न्यूज रहे थे जीए
1: आजाद कश्मीर जे मीरपुर डिवीजन में थियल चूंडन के रद्द करे छो नू लीग ते धांधली जो इल्जाम पीपल्स पार्टी की कामयाबी की दावा मुजफ्फराबाद में कारकुनन के खिताब कंदे बिलावल भुट्टो जरदारी चयो तो कौमी मुफादन के पोते करे नू लीग जे मुफाद के तरजीह देण वारो सिलसिलो भी नओ नाहे रियासत के फैसलो करणो पवंदो तो कौमी मुफाद अहम आहे या नू लीग जो मुफाद अहम आहे हुनन मरहलेवार चूंड धांधलियुन सां करायूं आहिनि आज़ाद कश्मीर में पंहिंजनि वोटनि जो तहफ़ुज़ कंदासीं मां हुननि खे न छॾींदसि अव्हां खे अव्हां जो हक़ वठी ॾींदसि मां पोइते न हटंदसि न ई कंहिं आॾो झुकंदसि कश्मीर जो 100% सीटूं हुननि खां खसींदसि नू लीग पीपल्स पार्टीअ जा आज़ाद कश्मीर में धांधलीअ वारा इल्ज़ाम रद्द करे छॾिया मीरपुर डिवीज़न में शफ़ाफ़ ऐं पुरअमन चूंडूं थियण जी दावा वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त मीरपुर डिवीज़न में चूंड माहौल तक़रीबन पुरअमन रहियो 13 तकनि मां 9 ते नू लीग कामयाबी माणी आहे 4 सीटूं पीपल्स पार्टी खटियूं आहिनि मीरपुर डिवीज़न में कुझु हंधनि ते अणवणंदड़ वाकिया पेश आया हिकु ॼणो फौत थियो 6 वॻोड़ियुनि खे सोगो कयो वियो अमीर मक़ाम चयो त चूंडन जो पुरअमन ऐं शफ़ाफ़ थियण रियासत जी कामयाबी आहे आज़ाद कश्मीर जे मीरपुर डिवीज़न में थियल चूंड में नू लीग मैदान मारे वरितो आज़ाद कश्मीर असेंबली जे 13 तकनि ते थियल चूंडनि जा नतीजा 9 ते नू लीग ऐं 4 ते पीपल्स पार्टी कामयाब नू लीग जी कामयाबी ते लीगी कारकुननि जो जशन गैर हतमी गैर सरकारी नतीजनि मूजिबि LA 1, LA 4, LA 5, LA 7, LA 9, LA 11, LA 12, LA 13, LA 6 ते नू लीग जे उमेदवार कामयाबी माणी LA 2, LA 3 ऐं LA 8 ते पीपल्स पार्टी उमेदवार कामयाब थिया वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि काबीना जी तवानाई बाबति कमेटी जो इजलास कमेटी ऑन रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 जे मसौदे में तरमीम जी मंज़ूरी ॾेई छॾी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां ओगरा जी कारकर्दगी बहितर बणाइण ऐं तेल जा स्टेट ज़खीरा वधाइण जी हिदायत शहबाज शरीफ चयो त नई पॉलिसीअ ते अमल खे यकीनी बणायो वञे आबना हरमुज़ ते रुगो ईरान जो कंट्रोल न हूंदो उमान गॾियल मैकेनिज़म जोड़ण जी तजवीज़ ॾेई छॾी परॾेही ख़बरू इदारे मूजिबि आबना हरमुज़ बाबति उमान जी तजवीज़ जा ख़िते जा ॿिया मुल्क बि हामी आहिनि उमान जी तजवीज़ आबना मलका तर्ज़ जी आहे जिते ख़िते जा मुल्क रज़ाकाराणे तौर फीस ॾींदा आहिनि जंहिं सां आबना मलका जा ख़र्च पूरा कया वेंदा आहिनि ईरान सालसन ज़रिए अमेरिका जूं पहुचायल तजवीज़ूं रद्द करे छॾियूं नायब ईरानी परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त अमेरिका सां सालसन ज़रिए ॻाल्हियूं इस्लामाबाद में थियूं हुयूं जेके अमेरिका जे ग़ैर ज़रूरी मुतालबनि सबबि नाकाम थियूं जंहिं बाद अमेरिकी वफ़द इस्लामाबाद खां वापसि छॾियो वियो जंहिं बाद ईरान बि ॻाल्हियूं जारी रखण जी ख़्वाहिश ज़ाहिर न कई ईरानी फ़ौज चयो आहे त अमेरिका तेहरान जी ॿीहर नाकाबंदी कई त फ़ैसिले खे जंग में वाद सम्झो वेंदो ईरान खे ख़रीद नथो करे सघिजे शिकस्त ॾेई सघिजे थी असां ईरान खे बुरी शिकस्त ॾेई रहिया आहियूं अमेरिकी रियासत मिशिगन में तकरीब खे ख़िताब कंदे सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जे बहरिया फिज़ाई दिफ़ाई निज़ाम अस्करी क़यादत खे ख़तमु करे छॾियो आहे ईरान हाणे मुआहिदे लाइ ॻाल्हियूं करे रहियो आहे F-35 जहाज़ तुर्किया खे विकिरो करण बाबति कंहिंजी बि मशवरे जी ज़रूरत नाहे तुर्किया असांजो बहितरीन इतिहादी आहे ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची जो उमानी ऐं सऊदी हम मुनसिब सां फ़ोन ते राब्तो आबना हरमुज़ समेत ख़िते जी सूरतयाल ते ॻाल्हियूं कयूं ईरानी परॾेही वज़ारत मूजिबि अब्बास इराक़ची सऊदी ऐं उमानी परॾेही वज़ीरनि सां अमुन अमान जे क़याम ऐं सिफ़ारती कोशिशुनि ते ॻाल्हियूं कयूं आहिनि पाकिस्तान ऐं अमेरिका जे स्ट्रेटजिक भाईवारी वधीक मज़बूत थी रही आहे पाक अमेरिका लाॻापनि में मुस्बत अकबराई सुठो सवण आहे इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त अमेरिका सां पार्लियामेंटी राब्ता बि वधिया आहिनि भाईवारीअ खे वधीक मज़बूत करण लाइ कम करे रहिया आहियूं वफाकी वजीरन जो नेशनल डिसाइडेड मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस जो दौरो मौसमियाती तब्दीलियों असर बाबत ब्रीफिंग वरती। एनडीएमए है तो मुल्क के मथान इलाकन में गैर मामूली बरसातों पवण जो इम्कान है। नाणे वाले वजीर मोहम्मद औरंगजेब तो मौसमियाती तब्दीली वधंदड़ आबादी वो चैलेंज है। आलमी बैंक से गड़ी मौसमियाती तब्दीली से कम कर रहा हूं। वफाकी वजीर मोइन भुट्टो तो पानी जखीरो करण की सलाहतन में वाद वक्त की जरूरत है। मुसद्दिक मलिक तो मौसमियाती तब्दीली सबब मुतासिर थींदड़ मुल्क सूरत हाल जा जिम्मेवार नाहिन। वफाकी वजीर अता तारण चयो त एनडीएमए सूरत हाल बाबत अगवाट अलर्ट करण जो निज़ाम जोड़ियो आहे।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300338569।

0: It's 4:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर से सुबह डे का शाम पंजे वगे तीन मरीजन जो इलाज कंदा हर जुमे छंछर आचर से बगैर फीस के चेकअप याद रखंदा मरीजन के वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट बुधन में।

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ای عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: रियासत के फैसलों करना पौधों तक कौमी मफाद अहम आहे या नून लीग जो मफाद है या नून लीग जो मफाद अहम आहे उन्हें बदले हवार चूंड धांधलियन लाए करायूं आजाद कश्मीर में पैंजन वोटन जो तहफुज कंदी मां मैसेज डींदस अवां जो हक वठी डींदस मां पोइते न हटंदस नई कें आडो झुकंदस कश्मीर जो सौ सैकड़ों सीटू उन्हनि खां खसींदुसि।

वज़ीर-ए-आज़म जी सदारत हेठि काबीना जी तवानाई बाबति कमेटी जो इजलास। कमेटी आयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 जे मुसवदे में तरमीम जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पारां ओकरा जी कारकरदगी बहितर बणाइण ऐं तेल जा स्ट्रेटेजिक ज़खीरा वधाइण जी हिदायत। शहबाज शरीफ चयो त नई पॉलिसी ते अमल खे यकीनी बणायो वञे। आपदा हरूस ते रुगो ईरान जो कंट्रोल न हूंदो। ओमान गडियल मैकेनिज़म जोड़ण जी तजवीज़ ॾेई छॾी। परॾेही ख़बरू इदारे मूजिबि आपदा हरूस बाबति ओमान जी तजवीज़ जा ख़िते जा ॿिया मुल्क बि हामी आहिनि। ओमान जी तजवीज़ आपदा मलाका तर्ज़ जी आहे, जिते ख़िते जा मुल्क रज़ाकारणी तौर फीस ॾींदा आहिनि, जंहिं सां आपदा मलाका जा ख़र्च पूरा कया वेंदा आहिनि।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए FM 94।

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

जिंदगी कुछ सोच कर विचार कर, आरजिया जिंदगी कुछ सोच कर विचार कर, प्यार दे ए प्यार वठ कैसा न तकरार कर। एडी आकड़ ए वडाई खाम खा आतो कई, एडी आकड़ ए वडाई खाम खा आतो कई, गुलफाम गुल सादो थी रह, हर मानु सा तू प्यार कर, हर मानु सा तू प्यार कर।

अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज़। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699।

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेट

0: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर
1: KTN न्यूज़। पाकिस्तान ने ये फैसला करना है, पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मुफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मुफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मुफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मुफाद को तरजीह दे रहे हैं।
2: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी आजाद कश्मीर जमीरपुर डिवीजन में थियल चूंडन के रद्द करे छो। नून लीग के धांधली जो इल्ज़ाम, पीपल्स पार्टी की कामयाबी की दावा। मुजफ्फराबाद में कारकुनन के खिताब कंदे बिलाल भुट्टो जरदारी कौमी मफाद के पोते करे नून लीग के मफाद के तरजीह दियण वो सिलसिलो नओं आहे। रियासत के हाँ फैसलो करणो पवंदो त कौमी मफाद अहम है या नून लीग जो मफाद अहम है। उन्होंने मरहलेवार चूंड धांधले लाए करायूं। आजाद कश्मीर में पैंजन वोटन जो तहफुज कंदी मां न छींदुस, अवां जो हक वी वस अटण वो ना नई कें आडो झुकंदस। कश्मीर जो सौ सैकड़ों सीटू उन खसी वी। नून लीग पीपल्स पार्टी जा आजाद कश्मीर में धांधली वारा इल्ज़ाम रद्द कर छिया। मीरपुर डिवीजन में शफाफ और पुरमन चूंडू थियण की दावा। वज़ीर आज़म के सलाहकार राणा सनावला चाहिए तो मीरपुर डिवीजन में चूंड माहौल तकरीबन पुरमन रो तेरह तकन में नव ते नून लीग कामयाबी माणी है। चार सीटू पीपल्स पार्टी खटी हैं। मीरपुर डिवीजन में कुछ हंधन से अणवणंदड़ वाक्या पेश आया, एक जणो फोत थो, छह विगोड़ियों के सोगो वो। अमीर मुकाम चूंडन जो पुरमन ए शफाफ थियण रियासत की कामयाबी है। आजाद कश्मीर की मीरपुर डिवीजन में थियल चूंड में नून लीग मैदान मारे वरतो। आजाद कश्मीर असेंबली के तेरह तकन से थियल चूंडन जा नतीजा अची व्या। नव ते नून लीग ए चार ते पीपल्स पार्टी कामयाब। नून लीग की कामयाबी ते लीगी कारकुनन जो जशन। गैर अतमी गैर सरकारी नतीजन मूजिब एल ए वन, एल ए चार, पंज, सत, नव, एल ए यारह, एल ए बारह, एल ए तेरह ए एल ए छह ते नून लीग के उम्मीदवार कामयाबी माणे। एल ए ब, एल ए टे, एल ए अठ ते पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कामयाब थे। वज़ीर आज़म की सदारत हेठ काबीना की तवानाई बाबत कमेटी जो इजलास। कमेटी ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 के मसवदे में तरमीम की मंजूरी दई छी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारा ओगरा की कारकर्दगी बेहतर बणायण ए तेल जहा स्ट्रेटेजिक जखीरा वधायण की हिदायत। शहबाज शरीफ चयो त नई पॉलिसी से अमल के यकीनी बणाए वे। आबना अरमुस से रुगो ईरान जो कंट्रोल न हों मान गडियल मैकेनिज्म जोड़ने की तजवीज दई छी। पड़े खबर इदारे मूजिब आबना अरमुस बाबत उमान की तजवीज जहा खत्े जहा मुल्क भी हामी हैं। उमान की तजवीज आबनाए मलाका तर्ज जी है जिते खत्े जहा मुल्क रजाकारी तौर फीस दींदा जैसा आबनाए मलाका जहा खर्च पूरा क्या वा। जरिए अमरीका जो पहुंचल तजवीजू रद्द कर छद्यूं। नायब ईरानी पढ़ई वजीर काजिम गरीब आबादी है अमरीका सा सालिसन जरिए गालू इस्लामाबाद में थी हुई जे अमरीका के गैर जरूरी मुतालबन सबब नाकाम थियं। जै बाद अमरीकी अफवाद इस्लामाबाद का वापस हली वो जै बाद ईरान भी गालू जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर न कई। ईरानी फौज है अमरीका तेहरान की बीह नाकाबंदी कई त फैसले के जंग में वाद समझो वो।
0: आप सुन रहे थे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
5: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। ہانڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہانڈا شو روم مہرا پور نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہانڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہانڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہانڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہانڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پور رابطے کے لائے 03201800003

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. پروگرام صحت جی گال سان کرے حاضر خدمت اواں جو پینجو میزبان حاکم علی جسکانی. سامن جیو خوش تو جہان خوش, جیو آہی تو جہان آہی, صحت آہی تو سب کچھ آہی. چوندا ہن تندرستی ہزار نعمت آہی, بیٹھے جو سب کو کرے جو کیر بھی ناہی. تین کرے پینجو خیال رکھو, پینجے صحت جو خیال رکھو. جیو آہی تو جہان واہی, صحت واہی تو سب کچھ آہی. اسی ہمیشہ چوندا ہوں پینجو خیال رکھو, پینجے صحت جو خیال رکھو, پینجی پینجو پینجے گھر وارن جو, پینجے خاندان جو, پینجے پاڑے وارن جو خیال رکھو. پروگرام صحت کی گال میں اسانجے اسٹوڈیو میں موجود آہن ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب, جکی صحت بابت معلومات دیندا آہن ऐं मालूमात ॾेई रहिया आहिनि. डॉक्टर साहिब खे असीं ख़ुशि आमदी चवंदासीं. तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिए लाइव कॉल बि शामिलु थी सघो था. तव्हांखे असां नंबर नोट कराईंदा हलूं था, 0301-21-96-851, 0301-21-96-851. प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, जीअं महिरापुर FM 94 जो ही आवाज़ अव्हांजे समातुनि ताईं पहुचे पियो. 0301-21-96-851 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे. तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था. डॉक्टर साहिब हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि. डॉक्टर साहिब जो ख़ासि महिरबानी आहिनि, मोहबतूं आहिनि, जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में ईंदा आहिनि. का बि बीमारी लाइलाज नाहे, कॾहिं बि अव्हांखे मायूस नाहे थियणो. गले जा गुदूद आहिनि, पिते जी पथरी आहे, गुर्दे जी पथरी आहे, मसाने जी पथरी आहे, उनजो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कयो वञे थो. अधु रंगो आहे, अधु मथे जो सूरु आहे, सॼे मथे जो सूरु आहे, कीड़ो बि पुराणो, जोड़नि जो सूरु आहे, संदनि जो सूरु आहे, कुंदरग जो सूरु आहे, अव्हांखे दिलि जो मर्ज़ु आहे, फॉलिज आहे, खंघि आहे, टीबी आहे, मादे जी तकलीफ़ आहे. अव्हां का बि शइ खाओ था ऐं अव्हांखे उल्टी अचे थी, यानी मादे जी अल्सर आहे, तिरी अव्हांजी वधी वई आहे, जिगर जूं बीमारियूं आहिनि, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो. या जेके मर्दनि ऐं औरतुनि जूं पोशीदा बीमारियूं आहिनि, उन्हनि जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो. 0301-21-96-851 तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था. डॉक्टर साहिब खे असां सभ खां पहिरियां पंहिंजे प्रोग्राम में ख़ुशि आमदी चऊं था. डॉक्टर साहिबु ठीकु आहियो, तबियत ठीकु आहे?
1: जी जी, अलाह ताला जे सां.
0: डॉक्टर साहब, अॼु कहिड़े मौज़ू बाबति असांजे मौज़ ॿुधंदड़नि खे ॼाण ॾींदा, पंहिंजो लाइव कॉल जो नंबर बि ॿुधाईंदा, पंहिंजा ॾींहं बि ॿुधाईंदा त कहिड़ा कहिड़ा ॾींहं अव्हां क्लिनिक ते वेहंदा आहियो, कहिड़नि ॾींहनि में मरीज़नि जो इलाजु करियो था, अव्हांजी जेकी चेकअप फीस आहे उहा मुफ़्त कहिड़े ॾींहनि में आहे?
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. पहिरियों त सभु तारीफ़ूं अरब पाकचूं जेको असांखे जारे थो, खाराए थो, रोज़ी ॾिए थो, ख़ुशी ॾिए थो ऐं सभिनी ज़मीनी आसमानी आफ़तुनि खां महफ़ूज़ रखे थो. असांजो प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि, अव्हांखे ख़बर आहे त बर वक़्त हिन टाइम ते रोज़ाना नशर थींदो आहे ऐं उनखां अलावा असांजी क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक हफ़्ते जा 6 ॾींहं मेहरापुर शहर में मौजूदु हूंदा आहियूं, जंहिंमें 3 ॾींहं असांजो चेकअप फीस फ्री रखियलु हूंदो आहे, जुमो, छंछरु, आचर. उनखां अलावा अङारे जो ॾींहुं छुटी हूंदी आहे, बकाया ॿिया ॾींहं जेको आहे समूरा क्लिनिक ते हूंदा आहियूं. ऐं अव्हांखे ख़बर आहे त जंहिं ॾींहुं चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे, बकाया दवाऊं जेको आहे सो मरीज़ खे स्टोर तां वठणी पवंदियूं आहिनि. क्लिनिक जो एड्रेस अव्हांखे ख़बर आहे त कोटड़ी रोड ते साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप मेहरापुर शहर में मौजूदु आहे. टाइमिंग सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं मौजूदु हूंदी आहे. अहिड़े तरीक़े सां जेकी रूटीन जे मुताबिक़ ख़बर आहे, जेके असांजे प्रोग्राम में मौज़ूआत हूंदा आहिनि, नंढियूं नंढियूं बीमारियूं या वॾियूं वॾियूं जेके बीमारियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जे बारे में अवेयरनेस ॾियणु, असांजे प्रोग्राम जो मक़सदु बि इहो ई हूंदो आहे त अवेयरनेस ॾींदा आहियूं, त चाहे कहिड़ी बि बीमारी हुजे या उनजे मुतालिक़ ॼाण या उनजे मुतालिक़ कहिड़ा टोटका हूंदा आहिनि, जहिड़ो इलाजु हूंदो आहे उनजे बारे में ॾस वग़ैरह ॾींदा आहियूं. अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं अॼुकल्ह तव्हां ॾिसंदा आहियो त ख़ासि तौर ते छो जो गुज़िरियल प्रोग्रामनि करण खां बाद में असांखे जेकी फीडबैक मिलंदा आहिनि या वरी असां वटि SMS वग़ैरह ईंदा आहिनि त हिन बीमारी जे बारे में असांखे ज़रूरु अवेयरनेस ॾींदा, त अहिड़े तरीक़े सां या उहे केस जेके असां ॾिसंदा आहियूं त रोज़मर्रा जे हिसाब सां क्लिनिक ते जेके वधीक पेशंट्स ईंदा आहिनि त सम्झंदा आहियूं त हिन बीमारीअ जी ॼाण हुजणु असांजे आवाम के ज़रूरी है। अड़ी तरीके से मुझे क्लिनिक से भी हिंसर गुजरल डीन में जो केसिस ज्यादा दिसण में आया वे ये हूँ जी अजकल जी खोड़ सारा पेशेंट इंदा जिनके डकनी की बीमारी होंगी है, यानी ये समझो तो जिनका आसाब कमज़ोर थी वेंदा या जिनके रगू कमज़ोर थी वेंदा बेसिकली वह बीमारी जो है सो जे बारे में बुधाइंदी तो वह बीमारी छो थी है वह बीमारी के चबो है या उन बीमारी थी वे तो उन घुर्ज एक्चुअली इन बीमारी के जो मेडिकली नेम हों वो चबो है पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज एक्चुअली जो है सो अंग्रेज डॉक्टर हुए जेम्स पार्किंसंस उन जैसे उन तशखीस कई जो है सो उन बारे में जैसे खोजना कई तो इन उनमें सफल वो यानी कामयाब वो तो इन कर मान में उन बीमारी के नालो भी उन जो उनको हल कर इन कर नालो भी पार्किंसंस डिजीज रखो वो एक्चुअली उन चबो है यानी डकनी की बीमारी। डकनी की बीमारी ये थी जो जैसे सवली सिंधी में समझाऊँ तो जो दिमाग जहाँ सेल्स हूँ उ डेथ थे शुरू थी वह जो असो न्यूरो ट्रांसमीटर हों जो असो डोपामीन जैसे चूँ वो केमिकल रिलीज कर बंद कर वो है यानी उन सेल्स जो सो कम न क्या उन सेल्स डेथ थे कम न करण के कर बीमारी यह थी है जो डकनी थी वी है जान में डकनी रही है यानी जो एसाब हूँ जिस्म जहा उ ढीला थी वह जिस्म पान ते कंट्रोल न कर सकता है वो कड़ी भी उम्र में कंखे भी थी सके थी उम्र के भी थी सके थी मर्द के भी थी सके थी जैसे वह बीमारी थी वी है तुम दिखो हों खास करे के ये बिल्कुल वेठा हों लेकिन जन मल लिखण शुरू कंदा तो उनको हथ जो है सो पांजे कंट्रोल में न रहंदो आहे उनकी पेन जो है सो यानी सही तरीके से लिखी न सकंदी आहे यानी उनको हथ सही जो सो कम न कंदो आहे या जन मल गालाईंदा आहिनि तो उनको कंठ जो है सो लुडंदो आहे हलंदा आहिनि त वञणो हिकड़े पासे हूंदो आहे माण्हू वेंदो ॿिए पासे हलियो वेंदो आहे कॾहिं कॾहिं छो जो उनजो मुख़्तलिफ़ टाइप्स हूंदा आहिनि को पछाड़ीअ में ॻाल्हाइण में बि जेको आहे सो घणा हिब कंदा आहिनि ॻाल्हाए बि सही न सघंदा आहिनि सो इन ई बीमारीअ खे जेको आहे सो पार्किंसंस डिज़ीज़ चयो वेंदो आहे छो जो हिस्ट्री तमामु घणी आहे हे हिकिड़ो नंढो प्रोग्राम हूंदो आहे जेको अचो जो कॉल्स बि असांखे वठणी हूंदियूं आहिनि ऐं उनखां पोइ जेको आहे सो मक़सदु सिर्फ़ु इहो हूंदो आहे आवाम ताईं इहा ॻाल्हि पहुचाइणी हूंदी आहे त हीअ बीमारी छो थींदी आहे जेकॾहिं थी वञे त हिन जो हल कहिड़ो आहे इन जो हल इहो ई आहे त मेडिकल में हिन जी ट्रीटमेंट घणा दोस्त जेके वीचारा पेशेंट्स हज़रात हूंदा आहिनि कराए ईंदा आहिनि लेकिन साल हा साल ॾह ॾह साल वीह वीह साल इन मर्ज़ में रहंदा आहिनि वीचारा ठीकु न थी सघंदा आहिनि। अलहमदिल्ला अलाह ताला जा करोड़े अहसान आहिनि ऐं अलाह ताला जी ज़ाती शिफ़ा ॾियण वारी आहे छो जो कंहिं बि डॉक्टर जे हथ में कुझु बि न हूंदो आहे इन जे करे असांजे हथ में बि कुझु न हूंदो आहे अलाह ताला जी ज़ात जेको आहे सो शिफ़ा ॾियण जी हूंदी आहे। अहिड़े तरीक़े सां होम्योपैथिक में अहिड़ियूं दवाऊं मौजूदु आहिनि जेके असां पेशेंट्स खे जॾहिं इस्तेमालु कराईंदा आहियूं ॾींदा आहियूं अलाह ताला जी महिरबानी सां उहो पेशेंट जेको आहे सो आहिस्ते आहिस्ते बिल्कुलु उनमें रिकवरी ईंदी वेंदी आहे। उहो पेशेंट जेको ॾहनि सालनि खां वीहनि सालनि खां वठी जेको ॾकिणी जी बीमारी में हूंदो आहे सही पाण ते फोकस न करे सघंदो आहे पाण ते ख़ुदि एतमादी हुनजी ख़तमु थी वेंदी आहे उहा हुनजी ख़ुदि एतमादी वापसि अची वेंदी आहे ऐं हू बिल्कुलु सही थी वेंदो आहे ऐं अॻे खां जेको आहे सो बिल्कुलु हू जेको आम माण्हू वांगुरु जेको आहे सो बिहेव करणु शुरू करणु लॻंदो आहे यानी इहा जेको आहे सो हुनखे रिकवरी थियणु शुरू थींदी आहे। इहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु होम्योपैथिक दवाउनि रस्ते हूअं बि होम्योपैथिक दवाउनि में अलाह ताला शिफ़ा रखी आहे हर मर्ज़ जे हवाले सां जीअं अव्हांखे प्रोग्राम जी शुरूआति में ॿुधाईंदा आहियूं त कहिड़ो बि मर्ज़ु हुजे चाहे मैदे जी तकलीफ़ आहे चाहे नक जी हॾी वधी वञे त या गोश्त अची वञे त उनजो बि या एलर्जी पुराणी रहंदी आहे जंहिंजे करे निछियूं ईंदियूं आहिनि त उनजो बि कामयाबु इलाजु असां वटि बग़ैर ऑपरेशन जे मौजूदु हूंदा आहिनि। घणनि खे टॉन्सिलाइटिस थींदा आहिनि गले जा गदूद थी वेंदा आहिनि ऐं जेकॾहिं गले जा गदूद थी वेंदा आहिनि त उनजो बि कामयाबु इलाजु असां वटि मौजूदु हूंदो आहे होम्योपैथिक दवाउनि रस्ते। उन खां अलावा जेके ऑपरेटेड डिज़ीज़ मिसाल जिन जे के अहिड़ा केस जिन जा सिर्फ़ु ऑपरेशन ई हूंदा आहिनि, मिसाल किडनी स्टोन्स आहे, गाल ब्लेडर स्टोन आहे, यानी पिते जी पथरी आहे, गुर्दे जी पथरी आहे, त उनजो बि असां वटि बग़ैर ऑपरेशन जे जेको आहे सो 15 mm जी पथरी हुजे चाहे 20 mm जी पथरी हुजे, अलाह ताला जी महिरबानी सां उहा हुन सां जेको आहे सो जेकी गुर्दे जी पथरी हूंदी आहे निकिरी वेंदी आहे, पिते जी पथरी हूंदी आहे उहा हुन में गरी ऐं ख़तमु थी वेंदी आहे। अहिड़े तरीक़े सां पुराणो जोड़नि जो सूरु हूंदो आहे, शैती का पेन हूंदो आहे, कुन रग जो सूरु जेको आहे सो उहो बि उनजो बि कामयाबु इलाजु होम्योपैथिक में मौजूदु हूंदो आहे। रगुनि जी पुराणी चाहे बीमारी आहे जिन जी जेको आहे सो नज़र घटि हूंदी आहे या जेके घटि ॿुधंदा आहिनि या जिन जे कननि में आवाज़ु ईंदो आहे, ब्लड प्रेशर जी तकलीफ़ हूंदी आहे, मैदे जी तकलीफ़ हूंदी आहे, पुराणी अल्सर हूंदी आहे, गैस जी तकलीफ़ हूंदी आहे, पुराणी कब्ज़ी जी तकलीफ़ हूंदी आहे, त उहा बि अलाह ताला जी महिरबानी सां होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां पेशंट ठीकु थी वेंदो आहे। जिन ॿारनि जो कदु न वधंदो आहे, अलाह ताला जी महिरबानी सां असांजी क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक खे इहो एज़ाज़ हासिलु आहे त असां वटि क्लिनिक ते खोड़ सारा पेशंट नंढा ॿार वीचारा जेके या जेके नंढियूं असांजूं हूंदियूं आहिनि भेनरूं जिन जा कदु जेको आहे सो नंढा हूंदा, अलाह ताला जी महिरबानी सां जॾहिं खां असां उन्हनि खे होम्योपैथिक दवाऊं ॾिनियूंसीं उन्हनि जा कदु जेको आहे सो पंहिंजे लेवल ते जेको आहे सो अची विया, या जेके उहे नंढड़ा ॿार हूंदा हुआ जेके हली कोन सघंदा हुआ या साॻाईंदा न आहिनि, उहे बि अलाह ताला जी महिरबानी सां बिल्कुलु ठीकु थी विया। अहिड़ी तरीक़े सां जेके अदड़ियूं जिनखे मोहिड़ा हूंदा आहिनि कन या नक जेके दाणा थी वेंदा आहिनि ऐं या जिन जा वार जेको आहे सो छणंदा आहिनि, उहो बि होम्योपैथिक दवा जे रस्ते बिल्कुलु जेको आहे सो ठीकु थी वेंदा आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां चाहे ॿियूं जेके बि मौसमी बीमारियूं हुजनि, टाइफाइड फीवर आहे या मलेरिया जेकी कंहिंखे थी वेंदी आहे या हेपाटाइटिस या फैटी लिवर जेको आहे सो घणनि खे अॼुकल्ह फैटी लिवर हू बि जेको आहे सो आम आहे जो घणा माण्हू जेको आहे सो सणब खाइण जा तमामु घणा शौक़ीन आहिनि ऐं सणब इस्तेमालु कंदा आहिनि जंहिंजे करे जेको आहे सो या असांजे रुटीन में चहल पहल तमामु घटि आहे जंहिंजे करे बि जेको आहे सो पोइ फैटी लिवर थी वेंदो आहे, अहिड़ा खाधा इस्तेमालु कंदा आहियूं जंहिंसां जिगर ते जेको आहे सो चर्बी अची वेंदी आहे, पोइ उनजो बि असां वटि कामयाबु इलाजु मौजूदु हूंदो आहे। या इवन जेको आहे सो किनखे हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी थी वञे थी उनजो बि कामयाबु इलाजु मौजूदु हूंदो आहे। जी सर,
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी मेहरापुर FM 94 जो आवाज़ तव्हांजे समातुनि में पहुचे पियो। असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2194-851 0301-2194-851। तव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि जेकी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। डॉक्टर साहिब जूं ख़ासि महिरबानियूं आहिनि, मुहबतूं आहिनि जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में ईंदा आहिनि। होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु, जेके दोस्त फेसबुक ज़रिए असां सां गॾु आहिनि उन्हनि जूं बि महिरबानियूं आहिनि, मुहबतूं आहिनि, खेनि उन्हनि खे बि दिलि वजान सां ख़ुशि आमदीद चऊं था। खोड़ो शरीफ़ नौशरो फिरोज़ खां मखदूम पीर मियां नूर मोहम्मद कुरैशी साहिब जूं महिरबानियूं असां सां गॾु आहिनि, चवनि पिया तमामु दया बहितरीन प्रोग्राम आहे डॉक्टर साहिब जो, ऐं डॉक्टर साहिब खे सलाम चवनि पिया। साईं तव्हांखे पेशंट आहे असांजो,
1: वालेकुम अस्सलाम साईं।
0: चए पियो ॾाढो सुठो प्रोग्राम आहे डॉक्टर साहिब जा, जेके टोटका आहिनि उहे ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि, असीं उन्हनि ते अमल कंदा आहियूं।
1: महिरबानी
0: दोस्तों, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेकी बज़रिया लाइव का लाइव असां सां गॾु आहिनि। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेकी लाइव कॉल ज़रिए अव्हांखे मुख़्तलिफ़ सवालनि जा जवाब ॾींदा, अव्हांखे ॼाण ॾींदा। 0301-2196-851 ऐं हिकु ॿियो नंबर आहे 0301-3998-3836। तव्हां असांजे कंहिं बि नंबर ते कॉल करे सघो था 0301-2196-851 ऐं 0301-3998-3836। का बि बीमारी लाइलाज नाहे, कॾहिं बि अव्हांखे मायूस नाहे थियणो। मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति तव्हांखे ॼाण ॾेई रहिया आहियूं डॉक्टर साहिबु। जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ऐं स्टोर साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि, जिते कराची इस्लामाबाद जा मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर आहिनि। होम्योपैथिक डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण साहब, सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल नवाब शाह, एम ए डी एच एम ए सिंध, आर एच एम बी इस्लामाबाद पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ए फैमिली फिजिशियन। गुर्दे में पथरी है, अवे पिते में पथरी है, मसान की पथरी है, उन्होंने बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो। संदन जो सूर है, जोड़न जो सूर है, गोडन जो सूर है, नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो, मथे जो सूर है, अध मथे जो सूर है, नज़र की कमजोरी आ, कन अवज वेह तो, कन जो सूर है, घट बुध में अचे तो, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल जहा मर्ज हैं, फालिज खंघ, टीबी, मादे जो सूर, मादे की अल्सर, तिरी जो वधण, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे की खारिश, फट, फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, औरतुन में वजन जो न वधण, औरतुन में मर्दन के पोशीदा बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वे तो। टाइम हर अरबा खमीस जुमो छंछर आचर ए सूमर से सुबह जो दहें खां शाम पंजे वगे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी मोहम्मद कबीर रोड महरापुर शहर में मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। नंबर वठण ऐं मालूमात जे लाइ या लाइव कॉल ज़रिए शामिल थियण जे लाइ 0301-9196-851 0301-9196-851 ऐं 0301-9398-2836 ते तव्हां कॉल करे शामिल थी सको था। प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण साहब असांजे स्टूडियो में मौजूद, जी लाइव कॉल ज़रिए अवां के मुख्तलिफ़ बीमारियों बाबत जान दींदा, अवां लाइव कॉल ज़रिए असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सको था। डॉक्टर साहब पंहिंजे मौज़ू खे अॻिते वधाईंदा हलूं था। इन मौज़ू खां हटी करे जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियूं आहिनि जीअं पिते जी पथरी हूंदी आहे, ऐं अक्सर करे ज़िक्र कंदो आहे त पिते जी पथरी जा माण्हू ख़ासि तौर ते परेशान हूंदा आहिनि, या अॼुकल्ह जीअं गर्मी जी मौसम आहे, मलेरिया बि थिए थी ऐं मलेरिया मच्छरनि जी बि मौसम हूंदी आहे, त इन बाबति बि कुझु ॼाण ॾींदा। माना अॼु जेकी मौसम आहे या लुक लॻे थी तमामु घणी गर्मी आहे, इन खां माण्हू पंहिंजो पाण कीअं बचाइनि?
1: बिल्कुलु साईं, जेको आहे सो तमामु ज़बरदस्त, जेको आहे सो ज़रूरी ॻाल्हि बि अवां पुछी आहे त अहिड़े तरीक़े सां अॼुकल्ह अवां ॾिसो त जेको आहे सो जेकी मौसम आहे जेकी 50 डिग्री 52 डिग्री सेंटीग्रेड ते ई अॼुकल्ह जी मौसम हले पई, त इन में पाण खे तमामु घणो एहतियात जेको आहे सो ख़ासि कर मां त हर शख़्स खे जेको आहे सो एहतियात करण जे लाइ चवंदुसि, पर हिन वक़्तु जेके घणो मुतासिर हिन मर्ज़ में थींदा आहिनि उहे नंढड़ा ॿार ऐं जेके बुज़ुर्ग हज़रात हूंदा आहिनि, या जेके जिन जो जेके अॾड़ियूं असांजी भेनरूं जेके कमज़ोर हूंदियूं आहिनि, जिन जो इम्यूनिटी सिस्टम घटि हूंदो आहे, कमज़ोर हूंदो आहे, त उन्हनि खे उहे वधीक मुतासिर थींदा आहिनि, या जेके मज़दूर तबिको आहे जेके ॿाहिरि जेको आहे उन्हनि जो हार्ड वर्क हूंदो आहे, फील्ड वर्क हूंदो आहे, जेके दोस्त बाइक ते जेको आहे सो घुमनि था, उन्हनि जे लाइ ज़रूरी एहतियात इहो हूंदो आहे त केप जो इस्तेमालु ज़रूरु कनि, सनग्लासिस, चश्मे जो इस्तेमालु ज़रूरु कनि, पाण खे ढके जेको आहे सो बिल्कुलु जेको आहे सो शाल सां ऐं हणणु खपे, ॾींहं में 2-4 दफ़ा ज़रूरी विझणु खपे, ऐं जेतिरो थी सघे पाणी जेको आहे सो इहो इंतज़ारु अवां न करियो तव्हांखे उञ कंहिं महिल जेको आहे सो लॻंदी अवां पाणी पवंदो, बल्कि पाणी तव्हां बे इंतिहा जेको आहे सो पीअजे, जीअं जिस्म में डिहाइड्रेशन जी कमी अवांखे न थी सघे, छो जो जेतिरो अवां पाणी पीअंदो जो पसीनो जेतिरो निकिरंदो, नमकियात निकिरंदी, अवांखे डिहाइड्रेशन थी वेंदी ऐं अवांजो बी पी लो थी सघे थो ऐं अवांखे कमज़ोरी ऐं निढाल कमज़ोरी में निढाल थी सघो था, जंहिंजे करे अवां बेहोश थी सघो था। इनजे करे जॾहिं तव्हां हाइपो में माण्हू वञण खां पोइ जेको आहे सो माण्हू ॾाढो घटि रिकवर थींदो आहे, इनजे करे जेको बि जंहिंखे बि अवां ॾिसो त दोस्त खे जेकॾहिं किथे अहिड़े क़िस्म जो हुनखे घशी जो दौरो पए थो या उस में जेकॾहिं कंहिंखे चकर अची वियो आहे त पहिरियां ई पहिरियां हुनखे जेको आहे सो कंहिं थधी जॻह ते जेको छांव वारी जॻह ते हुनखे आणे जेको आहे सो ऐं उनखे पोइ जेको आहे सो उनखे पाणी ज़रूरु जेको आहे सो उनखे पीआरियो वञे या जेको आहे सो लॻायो वञे ऐं उनखां पोइ जेको आहे सो जेके बि जीअं मां नंढनि ॿारनि जी ॻाल्हि कई त उन्हनि खे बि जेको आहे सो एहतियात कराए वञे, नंढनि ॿारनि खे जेको आहे सो हिन मौसम में कोशिशि करे त जेको आहे सो स्कूल खां जीअं वापसि अचनि त जेको आहे सो हुनखे वरी घर खां ॿाहिरि जेको आहे सो न कढियो वञे ऐं ॿारनि खे घरनि में ई जेको आहे सो रखियो वञे, उन्हनि खे बि पाणी जेको आहे सो ज़्यादा खां ज़्यादा इस्तेमालु करायो वञे ऐं कपिड़ा जेको आहे सो असां हिते ॾिसंदा आहियूं त जेके बि यंगर्स जेके हूंदा आहिनि उहे गहरे कलर जा कपिड़ा पाईंदा आहिनि, या ॿारनि खे बि अॼुकल्ह गहरे कलर जा कपिड़ा पाता वेंदा आहिनि, उन सां बि जेको आहे सो जेकी सनलाइट हूंदी आहे उहा हुन ते जेको आहे सो ज़्यादा अटैक करे सघे थी, इन जे करे नरम सॉफ्ट काटन जा कपिड़ा ऐं थधे कलर जा कपिड़ा जेको आहे सो ॿारनि खे पाता वञनि त उहो बि जेको आहे सो वधीक उन सां बि जेको आहे सो काफ़ी फ़र्क़ु पइजी ईंदो आहे। जूसिस जो इस्तेमालु, पाणी जो ज़्यादा इस्तेमालु ऐं जेको आहे सो जेके हथरादू शरबत घरनि में ठाहिया वेंदा आहिनि, मिसाल थादल आहे, उहा तव्हां जेको आहे सो इस्तेमालु कराए सघो था। ओ आर एस घर में तयारु कराए उहो जेको आहे सो तव्हां ॾेई सघो था। मिठाई जो शरबत जेको आहे सो ठाहे उहो ॾेई सघो था। इमली जो शरबत जेको आहे सो ठाहे उहो ॿारनि खे या वॾनि खे जेको आहे सो ॾेई सघो था। इन सां उहा काफ़ी तौर ते सही नमूने सां जेको आहे सो पंहिंजो बचाव करे सघो था। जी साईं,
0: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जी मेहरापुर FM 94 जो आवाज़। डॉक्टर साहिबु, तमामु बहितरीन तव्हां ॼाण ॾिनी मौसम जे हवाले सां, छोजो अॼुकल्ह घणी तमामु लू लॻे थी, असीं हुनखे लुक बि चवंदा आहियूं, या ईअं खणी चइजे त जेको आहे जेकी गर्मी जी शिदत आहे, ख़ासि तौर ते मंझंदि वारे टाइम में, उहो जेको टाइम हूंदो आहे मखसूस 11 खां वठी करे वेंदे मौसम जा तो 3 खां 4 वॻे ताईं,
1: बिल्कुलु
0: हिन में तमामु घणी गर्मी हूंदी आहे। कॾहिं कॾहिं माण्हू ईअं बि थींदो आहे त को रस्ते में ज़्यादा जेकी पंधु कंदा आहिनि ऐं वण टिण घटि आहिनि ऐं उत्साहित, उहे वरी किरी पवनि था। ख़ासि तौर ते नारे वारे पासे अॻु में ईअं थींदो त माना जिते उते त वरी भेटूं आहिनि, पोइ वण जो न हुजनि या कीअं, त माना उते इलाही काफ़ी माण्हू वीचारा मरनि बि सही जेको आहे।
1: बिल्कुलु,
0: ऐं अॻु में थींदो, हींअर त अञा हिकिड़ो नओं दौरु अची वियो आहे, पुराणे दौर में ॿुधाईंदा हुआ त माना पाणी बिघे माण्हू मरी वियो।
1: बिल्कुलु
0: ईअं बि थींदो, उहो रेगिस्तान हुयो, रेगिस्तान वारो इलाइक़ो, अॼुकल्ह नारो बि या जेको आहे सो थर आहे, उते बि घणी तरक़ी जेको आहे थी चुकी आहे, फ़र्क़ु अची वियो आहे। हीउ वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो, पहिरियां हलूं था कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। गदगद जो ॿुधंदा रहो जीअं मेरापुर FM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म, और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

बिलावल साहब, इलेक्शन जो फैसलो रियासत न पर अवाम कंदो आहे, तव्हां खे पंहिंजे बयानी ऐं कम ते ध्यान ॾियण घुर्जे। बिलावल भुट्टो विसारे वेठो आहे त 1 साल खां आज़ाद कश्मीर में सदन हुकूमत आहे। पीपल्स पार्टी जे दौर में आज़ाद कश्मीर जूं हालतूं ख़राब थियूं। सियासी बयाननि ऐं रोअण पिटण सां कुझु नाहे थींदो। कामयाबी लाइ कारकरदगी एजेंडा ऐं बयानियूं हुजण घुर्जे। फज़ल पंजाब मरियम नवाज़ जो पीपल्स पार्टी चेयरमैन खे जवाब। मरियम नवाज़ चयो आहे त गिलगित बल्तिस्तान जी चूंडनि में पीपी जी कामयाबी ते वज़ीर आज़म वाधायूं ॾिनियूं। आज़ाद कश्मीर में कामयाबी न मिलण ते बिलावल भुट्टो धांधली जो इल्ज़ाम मड़ी छॾियो। सिंध में लाॻीतो 17 साल हुकूमत कंदड़नि वटि ॿुधाइण लाइ कुझु नाहे। रोड टुटल आहिनि, अवाम ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत घुरे पियो। सिंध जा रोड ऐं गवर्नेंस ठीकु करियो। कारकरदगी हुजे हा त पीपी चेयरमैन खे तनक़ीद जो वक़्तु न मिले हा।

0: वक्त हालतूं ऐं वाकिया मुसलसल तब्दील थींदा रहनि था। मुस्तकिल हुजे थी सिर्फ़ तब्दीली, हर पल तब्दील थींदड़ वाकियनि जा नवां पहलू, वसी ऐं गहरो नुक़्ता नज़र, सिर्फ़ इनसाइड विद नाज़िया मीर सां।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
1: It's 7:15 PM.
2: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर, 03003385 69।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे, सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: नहीं के आडो चुकंदस पूरा मन रहण चाहूं भी सर शाहनवाज

0: जंहिंजे सीनियर वज़ीर शर्जील नामे आपके इस्तीफ़ा ॾेई ॿीहर चूंड विहण जो चैलेंज ॾेई छॾियो. शर्जील नामे वटि चयो आहे त मरियम नवाज़ उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई ॿीहर चूंड खटे ॾेखारे. हू बि सिंध जे कंहिं बि तक तां इस्तीफ़ा ॾेई चूंड विढ़ंदा. ख़बर पइजी वेंदी त पंजाब सां केतिरी नफ़रत. पंजाब में अव्हां खे ख़ैराती ऐं फॉर्म 47 तहत हुकूमत मिली आहे. आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली करे पीपल्स पार्टी जो मैंडेट चुराए वियो. तव्हां पंहिंजी भेट पीपल्स पार्टी सां न करियो. पीपल्स पार्टी जी क़यादत तमाम लाइ क़ुर्बानी ॾिनियूं. तव्हांजी क़यादत सदाई ॾुखे वक़्त में मुआदा करे मुल्क मां भॼी वई. आज़ाद कश्मीर चूंडनि जे पहिरें मरहले में नवाज़ मैदान मारे वरितो. पीपल्स पार्टी मीरपुर डिवीजन नून लीग ऐं चार ते पीपल्स पार्टी कामयाब. कारपोरेटनि खे वाधायूं. नवाज शरीफ जी क्या
1: सुन रहे थे जीए केटीएन न्यूज.
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर. होंडा मोटर्स बा अख्तियार इदारो इरशाद नईन मॉडल जे मुकरर दस्तियाब आहे. सर्विस होंडा सेंटर सर्विस एरिया जिते अकल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे. होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद. इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग. कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए अकल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर. फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी. होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी. इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर. राबते 03218000.
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरत.

0: मजबूती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03338X9।
1: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टिकल और इंजाइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आंखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: मेहरान आयरन स्टोर होलसेल डिपो,
4: सरिया गार्डन एंगल, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तियाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03302043720 आई 02424601000।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
7: 03992836।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 ऐं 0242460100

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेट हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: नेतन्याहू चाहे थो त आउं सदाई जंग में फातल हुजां। ईरान जे एटमी सरगर्मियुनि बाबति मूंखे इसराइली वज़ीर आज़म जी ॼाण जी ज़रूरत नाहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो फॉक्स न्यूज़ खे इंटरव्यू। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जे मामले ते मौक़िफ़नि ताईं सख़्त आहे। मुआदो न थियो त ईरान में मिशन मुकमल कयो वेंदो। ईरान खे हाणे मुआदनि जी भॼकड़ी करण न ॾिनी वेंदी। सामूंडी लंघ हुरमुस ते अमरीका जो मुकमल कंट्रोल आहे। ईरान जे पावर प्लांट्स ऐं पुलनि ते हमलनि जो को इरादो नाहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद, मा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307359212020।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बे डरंदी
6: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836

0: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385 69।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301 196 851

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मैं भी सदर सरदारी का बेटा हूँ, मैं भी मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो का भांजा हूँ। मैं सियासत अगर करना चाहता हूँ तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह करना चाहता हूँ। मुझे मजबूर ना करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये सोचे।
2: आजाद कश्मीर के चूंड नतीजन पीपल्स पार्टी नवाज लीग एक भेरो बीहर आमू सामू आने छो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग मथा आजाद कश्मीर में बदतरीन धांधलियन जा इल्जाम। नतीजा कबूल का बेनकार बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फराबाद में कारकुनन के खिताब कंदे कौमी वफाद के पोते करे

0: अल्हम्दुलिल्लाह कल हमें 13 में से 9 निश्चितें मिल गई हैं। पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ने अभी एक स्टेटमेंट दी कि रियासत ने फैसला कर लिया कि जीतेगी। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, फैसला अवाम करते। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत।
1: अरे सुनो, राइट तो सब राइट कर देगा ना।
0: का इल्जाम लगाया। सूबा सिंध एक वाहिद सूबा है जहां तकरीबन 17 साल से मुसलसल एक जमात की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और ये सियासी बयानबाजी पे टाइम गुजारने से रोने धोने से 5 साल की मुसलसल हुकूमत के बावजूद आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं था, और पीपल्स पार्टी ही के दौर में वहां के हालात खराब हुए। आप अपने सूबे की कारकर्दगी पर, अपनी कारकर्दगी पर गौर करें, आप अपनी खुद एहतसाबी कर। मैंने ये कहा था कि जिनके लोगों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आजाद कश्मीर की सड़कें कैसे बनाएंगे, तो आप इस चीज पर जरूर अपनी खुद एहतसाबी।

0: बिलावल साहब, इलेक्शन जो फैसलो रियासत न पर अवाम कंदो आहे, तव्हां खे पंहिंजे बयानीअ ऐं कम ते ध्यानु ॾियणु घुर्जे। बिलावल भुट्टो विसारे वेठो आहे त हिकु साल खां आज़ाद कश्मीर में सदन हुकूमत आहे। पीपल्स पार्टी जे दौर में आज़ाद कश्मीर जूं हालतूं ख़राब थियूं। सियासी बयाननि ऐं रोअण पिटण सां कुझु न आहे थींदो। कामयाबी लाइ कारकरदगी एजेंडा ऐं बयानियो हुजणु घुर्जे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो पीपल्स पार्टी चेयरमैन खे जवाब। मरियम नवाज़ चयो आहे त गिलगित बल्तिस्तान जे चूंडनि में पीपी जी कामयाबी ते वज़ीर आज़म वाधायूं ॾिनियूं। आज़ाद कश्मीर में कामयाबी न मिलण ते बिलावल भुट्टो धांधली जो इल्ज़ाम मणी छॾियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GAFM 94।